सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रही हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना

अपना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक तीन चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का वंदना कार्यक्रम।

प्रभु, वाकई में इस संसार में आकर माया जाल के दुष्चक्र में फंसकर आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। और कभी तो ऐसा होता है कि एक कष्ट कम होता है तो दूसरा उससे पहले आ जाता है। समझ नहीं आता है प्रभु क्या करें। हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे कि अब बस प्रभु ये आंखें जो आपका दर्शन करना चाहती हैं प्रभु, और इस दर्शन प्राप्ति के लिए अब बहुत बहुत बहुत कोशिश कर ली, लेकिन प्रभु इस तड़पते हुए मन को, विकल आंखों को प्रभु अब दर्शन दे दो प्रभु।

हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम तो बस इतना जानते हैं कि निश्चल इस हृदय में प्रभु ये भक्ति भाव जो सदा ही बहती रहती है, और कुछ भी हम कर्म कर नहीं जानते, ना भक्ति ना पूजा कुछ भी नहीं, बस इतना पता है प्रभु हम तो बहुत भोले हैं और आप भोलेनाथ हैं। जैसे

0: आप सुन रहे थे अभी समवेत स्वरों में देशभक्त पर रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वर में भक्ति पर रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे लखवीर सिंह लखा, अजय कुमार, ललिता घोष और अनूप जलोटा के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज मानसिक दृढ़ता संबंधी विचार। वचन स्वर यतिंद्र चतुर्वेदी का है।
1: प्रभाव मनुष्य के आचरण पर भली भांति प्रतिबिंबित होता है। मन में बसी भावनाएं, कामनाएं और वासनाएं मनुष्य के आचार विचार को ढालकर उसे उन्नति या अवनति के मार्ग पर ले जाती हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से शक्ति व दृढ़ता का अर्जन किया जाता है। मन में कुविचारों के आते ही हम मानसिक पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे आचरण भी वैसे ही होने लगते हैं जैसा हम सोचते हैं। कुविचारों के मन में आती ही व्यक्तित्व का ह्रास स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रचनात्मक दिशा में कोई उपलब्धि कर रहे हैं या प्रयासरत हैं या कर चुके हैं उनके मन में कभी कोई कुविचार आया ही नहीं या आएगा ही नहीं। उनके मन में भी कुविचार आते अवश्य हैं, परंतु वे बलपूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति से उनका परित्याग कर देते हैं तथा उन कुविचारों को अपने मन में स्थायित्व प्रदान नहीं करते और फिर वे पुनः सत्कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। मन, कर्म तथा वचन से किए गए बुरे कार्यों के कारण मन में पश्चाताप अवश्य होता है, आत्मग्लानि की अनुभूति होती है और यहीं से मानसिक पतन की सी गति प्रारंभ हो जाती है। इसके विपरीत सद्कार्य आत्मिक संतोष प्रदान करने वाले होते हैं तथा मानसिक दृढ़ता में और भी अधिक बढ़ोतरी होती है। महान नाटककार शेक्सपियर के दुखांत नाटकों के नायक इस बात का एक सजीव उदाहरण है। नायक सर्वगुण संपन्न होते हुए भी पतन की ओर ही अग्रसर क्यों होता रहा? क्योंकि उसमें कोई न कोई एक कमी, एक मानसिक कुविचार स्थायी रूप से घर किए हुए थी उसके आचरण को, जो सदैव प्रभावित करती रही। परिणाम स्वरूप वो पतन मार्गी बनता रहा। शेक्सपियर के दुखांत नाटकों का कोई नायक वीरता और साहस से युक्त है, उसकी वीरता सराही भी जाती है, पर राज्य पाने की लालसा उसे अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने पर विवश कर देती है। कुकृत्य करके वो अपने अभीष्ट की सिद्धि भी कर लेता है, परंतु मन का सदपक्ष उसे मानसिक संत्रास का भागी बना देता है और वो अपने आप को सबसे निरीह और अशक्त प्राणी मानता है।

0: से ही कोई अतिकामी है तो कोई अत्यधिक ईर्ष्या से ग्रस्त है, और ये दुर्भावनाएं उसके आचरण को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करती हैं। नाटक के ये पात्र सामान्य जनजीवन में भी कहीं न कहीं सजीव हो उठते हैं और अपराधों को जन्म देते हैं। अपराध करके हम कितने भी संपन्न हो जाएं, कितने भी सुखी हो जाएं, परंतु मानसिक शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। कहीं न कहीं मन पश्चाताप से त्रस्त रहता है। ऐसे में हमारा स्वभाव, हमारे आचरण सभी कुछ अमानवीय हो जाते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और आचरणों में आवेश सदैव परिलक्षित होता है। जिस तरह किसी ऊंची पहाड़ी की ढलान पर किसी गाड़ी को चालक रहित छोड़ दिया जाए, तो जो स्थिति उस गाड़ी की होगी, वही स्थिति मन की भी है। मन में कुविचारों के आते ही यदि नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आचरणों की भी वही स्थिति होती है। एक बार कुमार्गगामी होने पर पुनः वापस लौटना प्रायः कठिन हो जाता है। यद्यपि ये असंभव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में मानसिक दृढ़ता संबंधी विचार स्वर यतेंद्र चतुर्वेदी का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांस से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह मेताली वी सिंह के थे, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर बीवी गर्ग से ओपी सिंह की ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा हेपेटाइटिस कारण लक्षण और निदान। सुबह 9:00 सुनिएगा हिंदी वार्ता क्रम में प्रेमलता पालीवाल की वार्ता। विषय होगा भारतीय संस्कृति और जनजीवन।

बहनें कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व वन्य प्रकृति संरक्षण दिवस पर चर्चा की जाएगी और सुरभि शर्मा की डॉक्टर मयंक से ली गई भेंट वार्ता भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। विषय होगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक जानकारी, साथ ही कुछ घरेलू टिप्स और फिल्म संगीत भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा 2:30 का। यह वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर चर्चा होगी। सपना सारस्वत वार्ता प्रस्तुत करेंगी कानूनी वार्ता क्रम में। आज इसमें जानकारी देंगी वो सूचना का अधिकार जाने विषय पर। हेलो आकाशवाणी, आज ये फोन इन कार्यक्रम होगा 6:15 से। विषय हो रहेगा आज का बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगे कार्यक्रम में डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु चिकित्सक वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा।

फिल्म भी भजनों पर आधारित भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:45 पर, संध्या 7:05 पर आज आप ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य

0: सुधा में श्री निवास का काव्य पाठ सुनेंगे। श्रोताओं की व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा गीत बात SMS दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में मेघ श्याम प्रस्तुत करेंगे कुछ ब्रज लोकगीत। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। इस कार्यक्रम में शाहजी मंदिर वृंदावन के बारे में सुनिएगा जानकारी, प्रस्तुति R.K. त्रिपाठी की होगी। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में विजय सिंह नौलखा से ये जानकारी। विषय है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम।
1: आज हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का गाय और भैंस के स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अक्सर किसान या पशुपालक भाई सुई लगाकर दूध निकालते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो शरीर के क्रिया विज्ञान को सीधे प्रभावित करता है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करता है। प्राकृतिक रूप से संकुचन की आवश्यकता बच्चे के जन्म के समय, गर्भाशय में तथा दूध उतारते समय पशु के दुग्ध संस्थान में एलुवेलाई नामक ग्रंथि में होती है। प्राकृतिक रूप से यह हार्मोन विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार शरीर से श्रावित किया जाता है। गाय और भैंस प्रजाति के मादा पशुओं में गर्भाशय के संकुचन की आवश्यकता तब होती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन श्रावित होता है तथा बच्चे का सकुशल जन्म हो जाता है। इसी प्रकार दूध निकालते समय इस हार्मोन की आवश्यकता होती है जब गाय या भैंस के स्तनों को लबारे या मनुष्य द्वारा खींचा, चूसा या सहलाया जाता है, तब विभिन्न शारीरिक क्रिया विज्ञानी प्रतिक्रियाओं के चलते यह हार्मोन अपने आप श्रावित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीटोसिन हार्मोन गाय या भैंस के दुग्ध संस्थान में स्थित एलुवेलाई नामक ग्रंथि को संकुचित कर देता है। इस ग्रंथि में दूध भंडारित रहता है, इस प्रकार वह दूध स्तनों में आ जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हार्मोन की शरीर के अंदर उम्र केवल 1 से 5 मिनट तक होती है। प्राकृतिक रूप से इसे लीवर और गुर्दे यानी किडनी द्वारा रक्त से पृथक करके निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से इस हार्मोन की रक्त में उतनी ही मात्रा श्रावित होती है जितनी वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है, अतः ऐसी परिस्थिति में इसका पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अप्राकृतिक रूप से अर्थात इंजेक्शन के रूप में इस हार्मोन की अत्यधिक मात्रा शरीर में पहुंचा दी जाती है, जिससे यह हार्मोन शरीर की अन्य ग्रंथियों में भी अवांछनीय संकुचन उत्पन्न कर देता है। इसे रक्त से हटाने के लिए लीवर तथा गुर्दों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, अतः इसका सीधा प्रभाव लीवर, गुर्दों तथा अन्य ग्रंथियों पर पड़ता है तथा इसके खराब हो जाने की आशंका बनी रहती है। अब ऐसे पशु का दूध जिसे अत्यधिक मात्रा में एवं प्रतिदिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके कच्चे दूध के सेवन से लवारों तथा मनुष्य के शरीर में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा वे सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो गाय या भैंस को अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिए जाने से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन की अत्यधिक मात्रा का सीधा सीधा कुप्रभाव गर्भाशय तथा भ्रूण की स्थिति पर पड़ता है। इस हार्मोन के दिए जाने से गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे गर्भाशय तथा भ्रूण को चोट लगती है। कई बार यह हार्मोन भ्रूण की मौत का कारण भी बन जाता है। गर्भित पशुओं में इस हार्मोन का प्रतिदिन एवं अत्यधिक उपयोग करने से गर्भपात हो सकता है तथा कभी कभी गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। ऐसी गाय जिसे प्रतिदिन अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके गर्भाधान में भी बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन की अधिक मात्रा पशु को लंबी अवधि तक दी जाती है तो पशु में प्रारंभिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पशु उदासी महसूस करता है जिसमें अवसाद भी सम्मिलित है। गंभीर लक्षणों के रूप में पशु में नशे के लक्षण परिलक्षित होते हैं जो अंततः दौरे में बदल जाते हैं। पशु कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी संभव है। इन लक्षणों के उत्पन्न होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ऐसे लक्षणों से पशु को बचाए रखने

0: के लिए पशु को अपने स्तर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशु से दूध प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन के रूप में इस हार्मोन को बाहर से देना एक अप्राकृतिक क्रिया है। इससे पशु को कष्ट होता है और यह पशु उत्पीड़न की श्रेणी में भी आता है। पशु उत्पीड़न एक गैर कानूनी कार्य है, इसके लिए संविधान में सजा का भी प्रावधान है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन न दें। यदि वह ऐसा पहले से कर रहे हैं तो पशु के स्वास्थ्य तथा मानव समाज के हित में भी इसे अविलंब रोक दें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बिना पशु चिकित्सक के परामर्श के पशुओं को देना गैर मानवीय तथा असंवैधानिक है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, और अब साथियों समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉ. जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनाङ्कात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत्, तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्ष परितन्त्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमन्त्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिर न्यासाय प्राप्त दान राशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां 4-सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले 5वें सदस्यरूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं 2 सप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् 8 अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का यह पहला गीत साथियों आप सबकी नजर।

2 बीघा जमीन के इस गीत को। गीत को शब्दों में ढाला था गीतकार शैलेंद्र ने और संगीत था सलिल चौधरी का। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

रेशमी रुमाल फिल्म के इस गीत को आवाज़ दी थी तलत महमूद साहब ने, और गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान साहब ने, और संगीत बाबुल का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अंतर्गत। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:15 से आप सुनेंगे हेलो किसान वाणी कार्यक्रम। आज का विषय होगा बरसात में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ, वेटनरी कॉलेज मथुरा। साथियों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग, जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था है, पशुओं का खान पान, गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर राम सागर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा, कृपया ध्यान रखें, आज शाम 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। और साथियों, अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना दर्द फिल्म के गीत को उमा देवी उर्फ टुंटन की आवाज़ में। गीत को लिखा था शकील बदायूं ने और संगीत नौशाद साहब का था। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज़ में फिल्म बड़ी बहन का ये गीत। कौमर जलालाबादी ने इस गीत को शब्दों में ढाला था और संगीत हुसनलाल भगतराम का था। आज का साथियों ये वंदना, माफ़ कीजिएगा, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

साथियों, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:15 से हेलो किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ, वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग, जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था है, पशुओं का खान पान है, गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर राम सागर से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 25:30-135 पर आप संपर्क करके ये जानकारी ले सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मथुरा से बाहर के जो श्रोता है वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। सूचना समाप्त थी। और अब साथियों, अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।

0: है महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। हंगामा जारी रहने के कारण और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश

सरकार को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को

0: श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस बीच इस मामले में अयोध्या में कल एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर पर श्री योगी गोरक्ष पीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
1: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक हैं, जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य, संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास निश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े अपने विचार, सुझाव और विजन साझा करने का आग्रह किया गया है। इनमें से चुने गए सुझावों को प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। बलरामपुर जिले की सदर सीट से पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हनुमंत सिंह का कल लखनऊ में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हनुमंत सिंह ने अपनी सेवा भावना एवं संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी परिवार की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रदेश एवं समाज की असीम सेवा की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी तथा बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक

0: परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

साथियों, ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आओ। आज ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे इस कार्यक्रम में जानकारी लेते हैं शाह जी मंदिर वृंदावन के बारे में।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला के अंतर्गत प्रस्तुत है आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार रूपक शाहजी मंदिर वृंदावन। लेखक हैं डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल, संयोजक श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता रामकिशोर त्रिपाठी।

0: वृंदावन कृष्ण भाव रूप है, यहाँ की संस्कृति राधा कृष्ण गंधा है। पुरा काल से ये एक मंदिर नगर है। मंदिर हैं पृथ्वी की प्रार्थनाएं। यमुना जी से आलिंगित राजा हिम्मत बहादुर नामक एक विशाल पक्के घाट पर उनके वारिसों से खरीदी कुंज में स्थित है कला का यह विलक्षण खजाना मंदिर ललित निकुंज।
1: इसके निर्माता शाह बंधुओं के प्रचुर यश के कारण ही ये शाहजी का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है और है अपने संगमरमरी स्थापत्य में अंगड़ाते बल खाते बेजोड़ अनोखे ऊंचे खंभों के मनोरम स्निग्ध रूप के कारण लोक विश्व टेढ़े खंभों का मंदिर।
0: जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो मालूम होता है कि इस मंदिर के निर्माता राजा शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल कवि नाम ललित किशोरी ललित माधुरी लखनऊ के शाह गोविंद लाल के सुपुत्र थे।
1: इनके पूर्वज हांसी हिसार छोड़कर दिल्ली में महाजनी का कार्य करने लगे थे और नादिर शाह की दिल्ली लूट में उत्तर प्रदेश के गंगा तटवर्ती नगर फरुखाबाद में आकर बस गए थे। इनके बाबा बिहारी लाल को अवध के नवाब ने हीरे जवाहरातों से जड़े मयूर तख्त के निर्माण में सहयोग करने की वजह से उन्हें शाह की पदवी बख्शी थी।
0: ये लखनऊ के प्रसिद्ध जौहरी और महाजन थे। इन्होंने वृंदावन में निधिवन के पास प्रसिद्ध राधा रमन जी का मंदिर तथा उसके कलात्मक प्रवेश द्वार का निर्माण कराया था और अपनी पृथक एक कुंज भी बनवाई थी। इनके कृष्ण भक्त सुपुत्र शाह गोविंद लाल को अवध के नवाब ने राजा का खिताब दिया था।
1: कर्नाटक की लूट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाईचारे के हिमायती कलाविद और साहित्यिक नवाब बाजिद अली शाह का संपन्न राज्य और उसके

0: बड़े बड़े ताल्लुकेदारों जमींदारों की संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया।
1: नवाब वाजिद अली शाह के आभूषणों, महलों, तोशक खानों आदि की बेशकीमती वस्तुएं लूट ली। यहाँ तक कि नवाबों द्वारा संग्रहित हस्त निर्मित सुंदर चित्र और लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां भी लूट ली गईं। और तो खूबसूरत शाही बेगमों की इज्जत धूल में मिलाई जाने लगी।
0: शाह बिहारी लाल और शाह गोविंद लाल का युद्धों के नाम पर कर्ज लिया लाखों रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी डकार गई। लोकप्रिय बाजिद अली शाह अख्तर को सन 1856 में नजरबंद कर दिया गया
1: और फिर अवध को चरी के फल की तरह निगल लिया। कंपनी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन ने नवाब को गिरफ्तार करके कोलकाता के मटिया बुर्ज में मायूस जिंदगी बसर करने को मजबूर कर दिया।

0: इधर बड़ी सूझबूझ और अदम्य साहस से सपरिवार अपने हजारों सेवकों के साथ अपनी वेश कीमती वस्तुएं, जवाहरात, रंग बिरंगे बेहद खूबसूरत झाड़ फनूस, आदम का दर्पण और अपने प्राणों से प्यारे निज सेव्य ठाकुर श्री जी छोटे राधा रमन जी सदा के लिए वृंदावन ले आए गए। विषमतप परिस्थितियों में शाह कुंदनलाल और फुंदनलाल सन 1856 ईस्वी में वृंदावन आ गए।
1: देश में सबसे समृद्ध और अमन चैन वाले अवध राज में अंग्रेजों का कहर बरपा हुआ। इधर शाह बंधुओं ने ब्रज के हृदय वृंदावन को समृद्ध किया अपनी कलात्मक मंदिर ललित निकुंज बनवाकर। रासलीलाओं की धूम मचा दी।

0: शाह कुंदनलाल कविछाप ललित किशोरी गोमती नदी के पवित्र तट पर बनी अपनी विशाल भव्य कोठी में सांझी बनवाते और वृंदावन से राजधारी बुलवाकर सांझी लीला करवाते थे।
1: पूरा परिवार वृंदावनी भक्ति से ओत प्रोत था। उनके चैतन्य उपासक मनीषी सदगुरु गोस्वामी राधा गोविंद ने उनके यहाँ लखनऊ पधारकर जीव गोस्वामी रचित दिव्य गोपाल चंपू की कथा सुनाकर सबको कृष्ण चेतना से भर दिया था।
2: भाई, तू अकेलो ही अकेलो नाच और गाय रहे हो, कहा अपने संग में हम नचाए लेगो। आ भाई, तुहियो नाच तुहियो गा, आजा आजा भैया, तू मेरे संग नाच और गाय ले। बोलो हरी।
0: युगल विहार रस में डूबे प्रसिद्ध गोस्वामी गल्लू जी उपनाम गुणमंजरी जी ने लखनऊ शाहजी के घर पधारकर राधा कृष्ण के महोजल श्रृंगार का राज समझाकर परम प्रेम रस और वृंदावन रस की वर्षा की थी।

0: इनके दिल और दिमाग पर वृंदावन भावना की मोहिनी छा गई।
1: अपने सदगुरु गोस्वामी राधा गोविंद की नेक सलाह पर ये शाहबंधु राधा कृष्ण के नाम की गठरी बांधकर प्राकृतिक सुषमा मंडित रस भूमि वृंदावन में दूरगामी योजना बनाकर निकल भागने के लिए छटपटाया।

0: में अवध की राजनीति की समझ और प्रबंध कुशलता को लक्षित कर ही सन 1855 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से मीर मुंशी राजा शाह कुंदनलाल ललित किशोरी को अपने राज्य का पेशकार बनाए जाने की पेशकश की, जो मंजूर न हुई। वे आंख की किरकिरी जो बन गए थे।
1: विप्लवी तांतिया टोपे और नाना साहब की सुपरिचिता, अवध की विद्रोही बेगम महक परी हजरत महल शाह बंधुओं की कोठी पर एक रात रुकी थी। वो कौन सा रिश्ता था जो वाजिद अली शाह के भरोसेमंद गुड़ी शाहजी की कोठी पर कयामत जैसी रात इत्मीनान से काट कर वो नेपाल निकल सकी?
0: अनुश्रुति है कि शाह बंधुओं ने वृंदावन में विपलवी ठाकुर हीरा सिंह को 3 दिन टिकाकर आओ भगत की थी। शाह कुंदनलाल पर मुकदमा भी चला, पर धर्मनिष्ठा के बल पर फांसी के तख्ते पर झूलने से बचे शाह ललित किशोरी जी।
1: लखनऊ रहते समय शाह बंधुओं की भावुकता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हृदयोद्गार गीत बनकर निकलते और इन्हें वृंदावन की याद रह रह कर सताती। वो 2 बार पहले भी आ चुके थे। इस कशिश की साक्षी है उनके द्वारा रचित महान रचना अभिलाष माधुरी।
0: उसकी सबसे पुरानी सन 1858 की पांडुलिपि वृंदावन शोध संस्थान में सुरक्षित है। उनमें चटक चाह थी कि वे स्वामी हरिदास की संगीत साधना स्थली निधिवन के निकट और कालिंदी के तट पर हित हरिवंश जी के सेवा कुंज के पास अपना मंदिर ललित निकुंज बनवाकर उसमें राग रागनियों में निबद्ध कर स्वरचित रास लीलाएं मंचित करवाएं।

0: अपनी ललित माधुरी महोज्वल श्रृंगार भावना प्रकाशक सुंदर कलात्मक ललित निकुंज बनवाई। गुरु कृपा से, रज रसिकों की कृपा बल से उनकी ये चिर पोषित अभिलाषा आखिर पूरी हुई। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने सेवित छोटे श्री राधारमन जी के नाम सन 1866 ईस्वी में दान कर दी।
1: लक्ष्मण जैसे लाडले भक्त लघुव्राता शाह ललित माधुरी ने ईस्वी सन 1881 में एक दान पत्र द्वारा लखनऊ, कानपुर, फरखाबाद, बदायूं, इटावा, मथुरा आदि के अपने अधिकार में लौटे गांवों को, जिसकी 7240 बीघा भूमि श्री जी के चरणों में अर्पित कर दी। इतने बीघा धरती तो मुगल बादशाहों तथा राजपूत राजाओं ने भी वृंदावन के मंदिरों को भेंट न की थी। ये एक बेजोड़ त्याग था इन दोनों का।
0: शाह बंधुओं के हृदयोद्गार संगीत की विविध रागिनियों की बंदिशों में अमर हो गए और वृंदावन की यमुना तटवर्ती जुगल बगीची, शाह बिहारी लाल का निज मंदिर और अंत में मंदिर ललित निकुंज मृत्यु पर्यंत रासलीलाओं का सबसे सुंदर मौलिक लोकधर्मी नाट्य मंच बना।

ब्रज संस्कृति की सुगंध दूर दूर तक फैल गई। ब्रज का रसीला आसमान होली लीला के अबीर गुलाल और टेसू के रंगों से रंगीला हो गया।

0: होली रासलीला देखने को एक बार राजस्थान अलवर के महाराजा शिवदान सिंह भी शाहजी के मंदिर तथा वृंदावन के महान रसिक गोस्वामी के साथ होली लीला देखकर आनंद तरंगित हो उठे थे।
1: उन्होंने अपनी अलवर की प्रसिद्ध झिरी की खान का सर्वोत्तम संगमरमर और संगमूसा पत्थर नए मंदिर के निर्माण के लिए भिजवाया। शोध से ज्ञात हुआ कि ललित निकुंज मंदिर हेतु जो पत्थर आया था विदेश से नहीं, वीर देश राजस्थान से बड़े जतन से गाड़ियों पर लदवा कर लाया गया था।
0: शोध खोज से ज्ञात होता है कि वाजिद अली शाह ने कभी अपने दरबार खास में भी रासलीला करवाई थी और उन्होंने उस रासलीला में मंडल नृत्य करते स्वरूपों का रेखा चित्र भी बनवाया था।
1: इसका गवाह है लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय में संरक्षित अति महत्व का एकमात्र दुर्लभ चित्र। इसमें वाजिद अली शाह बेहद अदब से खड़े होकर राधा कृष्ण द्वारा रचाया रास मंडल नृत्य निहार रहे हैं। चारों ओर ओहदेदार भी महाराज का आनंद ले रहे हैं। इसके चित्रकार लखनऊ के हसन अली बताए जाते हैं।
0: नवाब के कुछ रहस्यों पर शाहजी की रचनाओं का प्रभाव पड़ा था। कथक नृत्य की प्रस्तुति का समूचा आधार राधा कृष्ण की रासलीला है।
1: शाहजी से प्रभावित होकर उसने एक नृत्य नाटिका राधा कन्हैया का किस्सा नाम से लिखी थी।
2: नदिया किनारे अख्तर, नदिया किनारे अख्तर, बांसुरी बजावत निकल जात पिया की सांसुरी रे, भजन लगी शाम की बांसुरी।
0: शाह कुंदनलाल और शाह फुंदनलाल अर्थात ललित किशोरी और ललित माधुरी विविध राग रागनियों में बेहद माहिर थे।
1: ललित निकुंज मंदिर के सभा विलास में व्यंजन सेवा करती एक सखी और कोई नहीं नवाब वाजिद अली शाह हैं। अंग्रेजों ने उनको अपने वतन से बेआबरू होकर निकाला था, किंतु एक मुसलमान कला प्रेमी और रासलीला से प्रभावित नवाब को वृंदावन की ललित निकुंज में बाइज्जत स्थायी स्थान दिया गया।
0: ये बड़े गौर करने की बात है और ये शाहजी के ऊंचे सोच और एक दिलदार घनिष्ठ मित्र की पहचान भी है।
1: शाह बंधुओं द्वारा रचे गए विनय के पदों में रागों के साथ कहीं कहीं तालों के निर्देश भी मिलते हैं। ईमन, काफी, खंभाच, जय जयवंती, आसावरी, देश, मालकोंस, झिंझोटी, मलार, धनाश्री आदि रागों के साथ होली, चैती, कजरी और दीपचंदी जैसी लोक धुनें और ताले भी वो भली प्रकार जानते थे।
0: रासधारियों को वो शिक्षा देते थे और उन्हें रासलीला मंचन के गुर सिखाते थे। जानकर यह आश्चर्य होता है कि उन्होंने प्रायः 200 रासलीलाएं लिखी और हमेशा अपनी उपासना और रस दृष्टि का विनियोग भी उनमें किया।
3: किशोरी जू, ये वृंदावन कौन को है?
4: कौन को बताऊं सखी,
5: मोय तो लगे प्यारी श्याम सुंदर ही।
1: उनके बराबर पूरे ब्रज मंडल में इतनी रसपूर्ण लीलाएं किसी कलाकार या रासधारी ने नहीं रची और न इतनी तैयारी से मंचन ही कराया।
0: उनके द्वारा रचित रासलीलाओं और पदों के समुच्चय ग्रंथ रसकलिका की पांडुलिपि शाह ललित माधुरी द्वारा लगन और समाज गायन की दृष्टि से तैयार कराया गया।
1: इसकी सूचीबद्ध नैनाभिराम पांडुलिपि शाहजी के वंशधरों के पास आज भी शाहजी मंदिर के ग्रंथ संग्रह में देखने को मिल जाती है, जो शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र है।
0: लघु रस कलिका के लीथो संस्करण आज भी पुराने रासधारियों के यहाँ मिल जाते हैं। हिंदी साहित्य के युग निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल के विख्यात सुकवि साहित्यकार गोस्वामी राधाचरण जी ने स्वरचित भक्तमाल में लिखा था,

0: सन 1860 ईस्वी की माघ पंचमी को अभिलाष संयुक्त तन मन धन अर्पण कर इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और इसमें संगमरमर, संगमूसा और भांति भांति के बेशकीमती पत्थरों की बारीक पच्चीकारी से सन 1868 ईस्वी में पूर्ण करा लिया गया।
1: बसंत पंचमी के दिन निज सेव्य ठाकुर श्री राधा रमन जी का समारोह पूर्वक पाठोत्सव हुआ। आज भी ऋतुराज भवन अर्थात विश्व प्रसिद्ध वसंती कमरे में ठाकुर जी इस पर्व पर अपनी मोहिनी और छठा वर्ष में दो बार छिटकाते हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश के दर्शनार्थी वृंदावन आया करते हैं। ये हैं श्री राकेश मिश्र।
2: ऐसी इच्छा होती है कि हाँ, ये भूमि छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती है, यहाँ बहुत ही हमको अच्छा लगा।
3: मेरा नाम राधा मिश्रा है, मैं वृंदावन में शाह जी के मंदिर में दर्शन करने आई, मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो वृंदावन में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन जो इस मंदिर की छटा देखने में बनती है वो अनूठी है।
0: इस मंदिर की चंद्रपौर का बुलंद प्रवेश द्वार है। पीले पत्थर में निर्मित इसकी विशाल मेहराबी कमल कलियों के जमघट से आकर्षक हो उठी हैं। इस प्रवेश द्वार से हाथी पर अंबारी सजाकर उसके ऊपर सवारियां बैठाकर भीतर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी है इसकी ऊंचाई।
1: बसंती कमरे के पास राधा निवास नामक बरांडा संगमरमर प्रस्तर पच्चीकारी की विविधता संजोए हुए है। फर्श पर शाह बिहारी लाल, शाह गोविंद लाल और उनके महान कलाविद मंदिर निर्माता शाह कुंदनलाल और फुंदनलाल सपरिवार भूमि पर अंकित किए गए हैं और पास में एक चित्रांकन है संभवतः नेत्रहीन मुनीम का। वर्ष में प्रायः 30 लाख दर्शकों की चरण धूल पाकर इनकी ब्रजरज पाने की मनोकामना पूरी होती है।
0: आप है शाह प्रशांत मोहतमिम मुतबल्ली शाहजी मंदिर वृंदावन।
2: सन 1868 में यह बनके तैयार हुआ था। सन 1868 में बसंत पंचमी वाले दिन ही ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा इसी बसंती कमरे में हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के उत्सव को इस दिन इस मंदिर में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी इसमें झाड़ फानूस हैं सब बेल्जियम ऑस्ट्रिया के हैं, ये सब उस दिन जलते हैं। विशेष बड़े बड़े जो दर्पण हैं ये बड़े ही अलौकिक हैं, इनकी आवाज़ देखते ही बनती है। और उसके बाद फिर होली का उत्सव इसमें मनाया जाता है। एकादशी रंग भरी एकादशी से लेकर धूल वाले दिन तक 4-5 दिन होली का उत्सव चलता है।
0: दाई ओर का बरामदा उतना ही बड़ा है, किंतु उसमें फ्रेम तो जड़े हैं, पर लगता है शाह कुंदन लाल के सन 1873 में निधन के बाद उन फ्रेमों में कोई पच्चीकारी न करा सका। इससे अनुमान होता है शाह कुंदन लाल स्वयं चित्रकारी करते थे।
1: इस बरांडे के एक स्तंभ पर इस कक्ष का नाम राधा निवास अंकित है, अतः ये रस विलासनी राधा जी और उनकी प्रधान सखी ललिता का भी भित्ति चित्रण प्रदर्शित है। बड़े बड़े संगमूसा के चिकने फ्रेमों में पच्चीकारी में पाषाण कला के दो नायाब नमूने हैं जो किसी रसपूर्ण कथा को व्यक्त करते हैं।
0: संभवतः जमुना तट पर स्थित ललिता सखी से कृष्ण राधा का अता पता पूछने गए होंगे, किंतु ललिता ने बाएं हाथ से इंगित कर बताया और दाएं हाथ की एक उंगली से रहस्यमय चुप्पी साधने का निर्देश देते हुए इशारा किया कि राधा रानी यमुना स्नान करने गई हैं।
1: यमुना स्नान कर आई सद्य स्नाता श्री राधा अपने अंगों का सौष्ठव बिखेर रही हैं। उनके मेघ जैसे काले किंतु दीर्घ केशों से जलबिंदु झर रहे हैं,
0: जिन्हें रसिक शेखर कृष्ण मोर बनकर बड़ी उत्कंठा से पान करते हुए रूप और प्रेम की अधीश्वरी राधा को निहार रहे हैं। ये चित्र रेखी यलय का उत्तम उदाहरण है। इसमें राधा की रूप शोभा और झीना वस्त्र और अलंकरण दर्शकों का मन मोह लेता है।
4: आप सुन रहे थे साथियों अभी ये कार्यक्रम ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे में। आज जानकारी हम सबने ली शाहजी मंदिर वृंदावन के बारे में, कड़ी संख्या आपने सुनी दूसरी। आलेख नरेश चंद बंसल का, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की थी। आज का वंदना कार्यक्रम माफ कीजिएगा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न होता है। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है कुशीपुर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक

0: से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

0: पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
5: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
4: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
5: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
6: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में आपने सुना भी। इंतकाम फिल्म के इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म जीवनधारा के इस गीत को। शब्दों में इस गीत को ढाला था गीतकार आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे हमारे साथ वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था, पशुओं का खान पान, गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर 25-30-135 पर संपर्क करके, अगर आप बाहर के श्रोता हैं तो फिर शून्य स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565, या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। कार्यक्रम का समय आप ध्यान रखें कृपया 6:15 से 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने अभी सुना संतोष आनंद के लिखे इस गीत को सुरेश वाडेकर लता मंगेशकर के युगल सुरों में, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत खूबसूरत सी कुछ फिल्मी गीतों का। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने अभी सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म रेन का ये गीत? और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है हिंदी वार्ता क्रम में प्रेमलता पालीवाल की ये वार्ता। विषय है भारतीय संस्कृति और जनजीवन।
5: मां संस्कृति विश्वधारा। कथन के अनुसार संस्कृति का उदय भारतीय संस्कृति से ही हुआ, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार वसुधैव कुटुंबकम ही रहा है। संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, अतः भारतीय संस्कृति का आधार सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया मंत्र ही है, जो जनजीवन के सर्वांगीण विकास एवं लोक कल्याण से सीधा जुड़ा हुआ है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग के साथ कृ धातु में तिन प्रत्यय लगाकर इस शब्द का निर्माण किया गया है, अर्थात सम्यक अथवा भली प्रकार से किया हुआ कार्य ही संस्कृत की परिधि में आता है। उचित रूपेण विशुद्ध एवं परमार्जित स्थित को ही इस प्रकार संस्कृत कहा जाता है। चूंकि विशुद्ध एवं परिमार्जित क्रियाएं मानव मन द्वारा ही संभव है, अतः संस्कृति का सीधा संबंध मानव जीवन से है, जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं के प्रकाश में सुदृढ़ संस्कृत का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव जीवन और उसके अंगों का क्रमिक विकास ही सांस्कृतिक धरोहर कहलाती है। तभी यह सत्य ही कहा गया है कि संस्कृति वो पुष्प है जो मानव जीवन के विचार रूपी वृक्ष पर प्रस्फुटित होती है। संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करते हुए ये कहना अनिवार्य है कि जबकि सभ्यता भौतिक व बाह्य पदार्थों के विकास पर निर्भर है, संस्कृति सदैव आंतरिक व आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी रहती है। भारतीय संस्कृति सदैव मानव के सर्वांगीण विकास की पोषिका रही है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है मानव के सभी अंगों का विकास, अर्थात शारीरिक, प्राणिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के क्रमिक विकास द्वारा पूर्ण मानवत्व प्राप्त करना ही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रहा है। इसी उद्देश्य से प्राचीन भारतीय संस्कृति ने वर्णाश्रम व्यवस्थाओं का निर्माण किया और जनजीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति द्वारा संसिद्ध करने का निर्देश दिया। आज जिस रूप में हम धर्म को संकुचित भाव से मानकर हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, वो अर्थ हमारी संस्कृति में मान्य नहीं है। धारणात धर्मम इत्याहु, धारण करने से ही धर्म कहा गया है। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए ऋषि पतंजलि ने धारणा को छठवां स्थान दिया है। वेद की ऋचाओं ने प्राण विद्या के माध्यम से मानव के अंदर विराजमान आत्मिक शक्ति, जो प्राणवायु के रूप में शरीर में व्याप्त है, उसकी उपासना को ही धर्म कहा है। योगी जन शरीर में नाभि से सहस्त्रार तक व्याप्त इसी प्राणवायु का ध्यान करते हैं, जिसकी सहज धारणा ही धर्म कहलाती है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म में चलने वाला रक्षित होता है। गीता की भी उद्घोषणा यही है, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म मानव धर्म में मरना ही श्रेयस्कर है। पर धर्म अर्थात मानव स्वभाव जो सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, तप, दया, शुचिता आदि यम नियमों के विपरीत जाना ही भयंकर परिणाम का सूचक है। मानवता के विपरीत जाना पशुता है, जो सर्वथा निषिद्ध है। धर्म की एक अन्य परिभाषा अत्यंत रोचक है, जिसके अनुसार जिससे अभ्युदय एवं कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि

सधर्मा। वास्तव में धर्म का यही वास्तव स्वरूप है। धर्म न केवल वैयक्तिक उन्नति का ही बोध कराता है, वरन व्यक्ति की चेतना का उन्नयन कर उस सार्वभौमिक बिंदु तक पहुंचाता है जिससे उस महामानव के सर्वांगीण विकास का क्रम अन्य जनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और वो पारलौकिक आनंद को भोगता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करता है। भारतीय जनजीवन अपनी संस्कृति से सीधा जुड़ा हुआ है क्योंकि संस्कृति मानव की ही अचल कृति है। भारतीय अर्थात वैदिक संस्कृति का मूल तत्व है आशावाद, ताकि जीवन आनंदमय व उल्लासमय रहे। आनंद प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। निरंतर आगे बढ़ने की लालसा ही हमारे वैदिक मंत्रों से प्रतिध्वनित होती है। प्रकृति की समस्त शक्तियां हमारी आशा को संसिद्ध करने के लिए सजग रहती हैं। तभी तो हम निरंतर कामना करते हैं कि हमारी वायु मधुमेह हो, हमारी नदियों का जल भी मधुमेह हो, आदि आदि ऋचाएं इस संदर्भ में उद्गान करती हैं। मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवा माधवीन संतोषधी। श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारी वैदिक अर्थात आर्य संहिताओं में दुख शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ। जनजीवन को सुखी बनाने के लिए उसी दिशा में प्रकृति का भरपूर सहयोग रहा है। तभी तो वैदिक ऋषियों ने सदा से प्रकृति की गोद में क्रीड़ा करने की कामना की है, उसके लालन पालन व पोषण में अमृतत्व की अनुभूति की है। यही नहीं, प्रकृति के विभिन्न तत्वों में निहित प्रसादनीय शक्ति को अपने मन में आविर्भूत होने की कामना करते हुए 100 वर्ष की जीने की इच्छा की है। तभी तो अथर्ववेद की ऋचाएं उद्घोषित करती हैं, पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम। भारतीय संस्कृत में कर्म कांड की भी विशेषता है। जातीय जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित करने की दिशा में वैदिक ऋषियों ने परमात्म विभूति रूप में सूर्य चंद्र वायु उषा आदि की उपासना आरंभ की और साथ ही याज्ञिक कर्मकांड का शुभारंभ भी हुआ। भारतीय संस्कृति में जनजीवन सीधा अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है क्योंकि मानव का स्वभाव अध्यात्मी है, जैसा कि गीता की उद्घोषणा है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हमारी संस्कृत का मूलाधार ऋत और सत्य की भावना है। समस्त संसार प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नियमानुकूल चलायमान है। इन नियमों में कहीं वैषम्य नहीं। इसी विषमता के अभाव को ऋत कहा जाता है। मानव जीवन के प्रेरक तत्वों को सत्य से घोषित किया गया। इस प्रकार प्रकृति और अध्यात्म के घनिष्ठतम एवं अभिन्नतम संयोग से भारतीय संस्कृति कण-कण में परमात्मा का वास स्वीकारती है। इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास जी भी घोषणा करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। अध्यात्मवाद हमें भोगवाद से दूर कर ईश्वर परक बुद्धि प्रदान करता है। आज के युग में यद्यपि भोगवाद बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है, फिर भी हमारी संस्कृति अध्यात्मवाद से दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई है। अतः घोर अंधकार में भी हमारे जनजीवन को सदैव आशा की किरण नजर आती है। इस नजर का ही तो कमाल है कि हम किसी शायर के शब्दों में गा उठते हैं, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर जो उठी तो दुआ बन गई। इस प्रकार अध्यात्म को अपनी गोद में समेटे हुए भारतीय जनजीवन आस्तिकता का पुजारी है। तभी संक्रमण काल होने पर भी हम जयराम की ही धुन लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और है सर्वशक्तिमान। हम उसे देख तो नहीं सकते किंतु उसकी अनुभूति अवश्य होती है और यही ब्राह्मी अनुभूति हमारा लक्ष्य माना गया है, जिसके बिना हमारी जीवन यात्रा अधूरी और हम हैं उन लहरों की तरह भटकते यात्री जो रात दिन किनारों से सिर पीटा करते हैं। तभी तो एक भावुक मन कह उठता है, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, वे मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। इसी अध्यात्मवाद के सहारे हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में त्याग वैराग की भावना का विशिष्ट स्थान है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो भोग कैसा, परिग्रह कैसा। श्रुति कहती है, मा गृधा कस्विद धनम, धन किसके लिए जोड़ा जाए जबकि सब कुछ ईश्वर का ही है। विदेशी दार्शनिक मैक्स मुलर की दृष्टि में मानवीय चिंतन शक्ति यहाँ पर अपने सर्वोच्च शिखर पर है, इससे आगे कुछ शेष नहीं है। आर्थिक जगत की समस्याओं का यही एक मूल हल है। हमारी

0: अनुष्ठित का विशिष्ट आधार है कर्मवाद, जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि कर्म करते हुए ही मानव का जीवन व्यतीत हो। गीता ने कर्म के सिद्धांत को अति विशद रूपेण प्रतिपादित किया। कर्मवाद मानव को कर्मण्यता का तथा आशावाद का संदेश देता है। हमारी संस्कृति के आधार पर हमारा जनजीवन आत्मविश्वास एवं समन्वय से निकट से जुड़ा हुआ है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी आत्मा की अमरता पर दृढ़ विश्वास और अपने जीवन के प्रति घोर आस्था। तभी तो यजुर्वेदीय मंत्र कहता है, वे आत्मघाती हैं जो स्वार्थ संकुचित वृत्ति से पीड़ित हैं, आत्महनन करता अंधकार युक्त लोकों में गमन करते हैं। अंत में ये डिंडुम घोष करते हुए हर्षान्वित हूँ कि हमारी संस्कृति सबका भला सबका उत्थान चाहती है। हम सब मिलकर एक साथ रहें, सभी समान भाव से विश्व में शांति बनाए रखें, तभी तो विश्व की कल्याण कामना करती ही ऋषा घोषित करती है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। इसी विश्व बंधुत्व के भाव को अपनाते हुए हमें वैदिक मंत्रों के साथ प्रार्थना करनी है, ताकि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा सकें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय।
1: आप अभी सुन रहे थे प्रेमलता पालीवाल की ये वार्ता। विषय था भारतीय संस्कृति और जनजीवन।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों 9:15 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: मानव केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
2: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैरवी में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी संपन्न, संस्कारयुक्त एवं राष्ट्र भावना से उत्प्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभारी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण, वृद्धि रुकावट, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, खानपान की आदतों में सुधार, बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए, शासन द्वारा संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का 100% लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैरवी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जल भराव न हो, सोकपिट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि
3: पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना, सर्कल, तहसील स्तर पर भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है।
1: संभल जिले की हलचल के बाद

0: ये सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सबा का।
1: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में जनपद मिर्जापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि पीएफई गेट बरौंधा से शुरू होकर आरटीओ ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में दो बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्जापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्जापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी।
2: देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
1: मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PFE की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, सदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। जनपद की तहसील चुनार में तैनात PFE के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्जापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर मिर्जापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम आवो हवा के अंतर्गत आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर सुचिता जैन से। विषय है मानव का पर्यावरण से संबंध।
4: पर्यावरण जीवन का स्रोत है

अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव एवं संपूर्ण जीव जगत को न केवल प्रशय देता रहा है अपितु विकास के प्रारंभिक काल से वर्तमान तक अस्तित्व में बनाए रखने का आधार रहा है और भविष्य का जीवन भी इसी पर निर्भर करता है। वायु, जल, भूमि, जीव जंतु तथा वनस्पति पर्यावरण के मूल घटक हैं, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से संपूर्ण जीव मंडल परिचालित होता है। सामान्य अर्थ में पर्यावरण उस सकल दृश्य अदृश्य तत्वों के लक्षणों व प्रभाव को कहते हैं जो किसी स्थान पर वस्तु या वहां के जैव स्वरूप के निकट से घिरे हुए अथवा बांधे हुए हैं एवं उसकी कार्यप्रणाली को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। जीव मंडल में जीवन का उद्भव

तरह प्रभावित करते हैं। जीव मंडल में जीवन का उद्भव, विकास एवं विलुप्त होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रकृति अथवा प्राकृतिक वातावरण के साथ उसका कितना समन्वय एवं सामंजस्य है। भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य ऐसी दशाओं से है जिनका अस्तित्व मनुष्य के क्रियाकलापों से अप्रभावित है, अर्थात यह पर्यावरण मानव रचित नहीं है, जो कि बिना मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से प्रभावित हुए स्वतः स्वरूपित एवं परिवर्तित होते हैं। मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है, जिनका उसकी आदतों एवं क्रियाओं पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के स्वरूपों में भूमि का धरातल, उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की प्रकृति जैसे कि उपजाऊपन या जल की उपलब्धता, उसकी स्थिति जैसे कि महाद्वीपीय है, द्वीपीय है, तटीय या अंतर्देशीय, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपदा, जलथल का वितरण, पर्वत, मैदान, वनस्पति एवं खगोलीय शक्ति, सौर ताप आदि जो कि पृथ्वी पर घटित होती है एवं मानव को प्रभावित करती है। पर्यावरण एवं मानव का सहसंबंध भौगोलिक अध्ययन का मूलाधार है, क्योंकि इसी संबंध से सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृश्यावली का निर्माण होता है। वास्तव में मानव पर्यावरण का संबंध एक गहन विषय है जो मानव की विकास यात्रा का परिचायक है तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि मानव अपने विकास हेतु पर्यावरण का उपयोग करता है। जब तक यह उपयोग सामंजस्यपूर्ण होता है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, किंतु जैसे ही प्राकृतिक तत्वों के शोषण में वृद्धि होती है व पृथ्वी की वहन क्षमता से अधिक भार डाला जाता है, इस संतुलन में व्यतिक्रम आता है जिसके कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती है। आज का मानव बना है दानव, प्रकृति का करता विनाश, नाम दिया उसी को विकास। न होंगे प्राकृतिक संसाधन, न होगा पर्यावरण संतुलन, कर बैठेगा स्वयं के अस्तित्व का हनन। मेरे विचार से प्रकृति की प्रत्येक इकाई महत्वपूर्ण है, एक दूसरे पर निर्भर भी है वो एक दूसरे की पूरक भी। यदि छोटी से छोटी इकाई, चाहे कोई छोटा सा जीव जंतु हो या कोई अन्य बड़ा जानवर, लेकिन जो कड़ियां बनी हुई होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, वो एक छोटी से छोटी कड़ी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़ा जानवर या प्राणी या कोई भी अन्य घटक जो कि पूरे जैविक स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। अतः हम सबका यह नैतिक दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकताओं को सीमित करते हुए सामंजस्यपूर्ण उपभोग करना चाहिए, वो पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

0: आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी डॉक्टर सुचिता जैन से। विषय था मानव का पर्यावरण से संबंध। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आइए ये सुनते हैं डॉक्टर वीवी गर्ग से ओपी सिंह की ली गई भेंटवार्ता। विषय है हेपेटाइटिस, कारण, लक्षण और निदान।
1: श्रोताओ, स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी नियामत है। स्वास्थ्य को पहला धन भी कहते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो निश्चित मानिए दुनिया जहाँ की जितनी भी खुशियाँ हैं वो हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं, उनको हम अर्ज कर सकते हैं, उनको हम कमा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हमारे पास हो और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन खुशियों का जो वास्तविक आनंद है हम नहीं ले सकते। इसीलिए बहुत सारी बीमारियों पर जागरूकता के लिए समय समय पर बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं और आज हेपेटाइटिस डे के नाम से हम मनाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके पीछे के कारण क्या है, इस दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है।

0: इन बहुत सारी जानकारियों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीवी गर्ग साहब, जो शहर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं और एक अब तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हमारे समाज में जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब।
0: तो ये जो दिवस की हम बात कर रहे थे, जिसको हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, तो इस बीमारी के बारे में भी बताइए, और इसको जो आज हम दिवस मना रहे हैं, इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये इस पीछे का क्या उद्देश्य है।
1: बिल्कुल सिंह साहब, दरअसल ये हेपेटाइटिस डे जो मनाना शुरू हुआ विश्व का, ये 1 अक्टूबर 2004 से शुरुआत हुई इसकी। उस समय लेकिन सारे देश एक ही डेट में नहीं मनाते थे, डिफरेंट डेट्स में मनाते थे। उसके बाद 2010 से ये शुरुआत हुई एक विश्व दिवस के रूप में, हेपेटाइटिस डे
0: निर्णय
1: के रूप में 28 जुलाई को मनाने का इसका वो किया गया।
0: हुआ।
1: हाँ, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, इसकी जो खोज हुई, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी, वो हमारे एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वारुक सैमुअल ब्लमबर्ग, जिन्हें बैरी ब्लमबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये खोज की इस वायरस की भी और इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन की भी।
0: जी।
1: तो उनका जन्म दिवस 28 जुलाई को है, तो उनको सम्मान देने के लिए और उनके योगदान को
0: सराहने के
1: सराहने के
0: लिए।
1: लिए ये 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है।
0: जी, तो ये तो इसके पीछे का इतिहास है।
1: हाँ
0: अब इसमें इसके थोड़ा सा हम विस्तार पे जाएं कि हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है जैसा
1: बिल्कुल
0: प्रचलन में
1: बिल्कुल।
0: है,
1: हाँ
0: तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, और उसमें मुख्यतः घातक कौन सा है, उस पर
1: हाँ
0: थोड़ा सा हम
1: हाँ
0: जानना चाहें।
1: बिल्कुल। बेसिकली हेपेटाइटिस तो 5 तरह की ही होती है, और आजकल एक और कोई वायरस आया है जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया, उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है। लेकिन हम लोग 5 तरह की उसको जानते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई।
0: ई जी
1: इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे अल्कोहलिक से हेपेटाइटिस होती है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होती है, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि ए बी सी डी ई आती हैं,
0: पांचों प्रकार
1: पांचों
0: आते हैं।
1: प्रकार के
0: तो
1: आते
0: इन
1: हैं।
0: पांचों प्रकारों में मतलब वायरस के प्रकार अलग होने की वजह से
1: या
0: इनको अलग दिया गया है नाम
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जिसमें।
1: बिल्कुल।
0: जी,
1: हाँ,
0: तो इनके वायरस अलग अलग हैं
1: अलग अलग
0: इसीलिए। तो
1: इसलिए
0: अब एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे इसमें जो सबसे ज्यादा घातक है वो कौन सा है इसमें।
1: इसमें हेपेटाइटिस जो बी है वो सबसे ज़्यादा घातक है। बी, सी और डी,
0: जी।
1: ये तीनों घातक हैं, और ए और ई ये सेल्फ लिमिटिंग है। 8 से 12 हफ्ते के दौरान में ये अपने आप ठीक हो भी जाती हैं, यदि आदमी सावधानी बरते और खान पान पे ध्यान रखे, तो वो ए और ई तो निकल जाती हैं। लेकिन बी, सी, डी ये भी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कई बार तो अननोटिस्ड निकल जाती हैं, आदमी को पता भी नहीं लगता,
0: पता भी नहीं लगता।
1: और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों को पता लगता है उसमें से भी मान के चलिए कि यदि टोटल हम लें तो 80% तक जो हेपेटाइटिस बी, सी, डी है ये ठीक हो जाती है अपने आप सेल्फ, क्योंकि वायरस है तो ये सेल्फ कंट्रोलिंग
0: कुछ एक निश्चित अवधि
1: निश्चित
0: में
1: है,
0: अपने
1: अपने
0: आप
1: आप
0: से।
1: निकल जाती है। लेकिन जो लोग क्रॉनिक फेज में जाते हैं, जैसे कि 3 महीने तक तो हम लोग सोचते हैं कि ये एक्यूट फेज में है, और 3 से 6 महीने के बीच में सब एक्यूट फेज कहते हैं, और 6 महीने के बाद जो क्रॉनिक फेज में जाते हैं वो फिर बहुत खतरनाक
0: वो
1: है,
0: फिर मुश्किल हो
1: वो फिर
0: जाता।
1: बहुत खतरनाक है।
0: अब अभी तो हमने नाम की चर्चा की, प्रकारों की चर्चा की, मैं लक्षण से आऊं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस हेपेटाइटिस में चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, और घातक आपने बी सी डी की बात की है इसमें, तो कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होता है।
1: लिवर,
0: जी।
1: उसमें सूजन भी आती है, इन्फ्लेमेशन भी होता है, और वायरल इन्फेक्शन भी होता है।
0: जी, मतलब सबसे
1: तो
0: ज़्यादा
1: सबसे
0: प्रभावित होने वाला अंग हमारा लिवर
1: ज़्यादा,
0: है,
1: हाँ,
0: ये
1: लेकिन लिवर के जब ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हमारा कोई भी अंग काम करना अपना
0: उसका फिर इम्पैक्ट आएगा।
1: इम्पैक्ट
0: तो
1: आएगा।
0: कुछ लक्षण भी उभर के आते हैं, कुछ
1: हाँ,
0: शुरुआत में, कुछ
1: शुरू,
0: क्रोन
1: हाँ,
0: में, कुछ बाद में।
1: शुरुआत में जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार
0: बुखार
1: हुआ,
0: आना।
1: जुकाम हुआ, खांसी हुई, उल्टी हुई, दस्त हुए, तो शुरुआत के तो लक्षण जैसे किसी भी वायरल इलनेस के होते हैं वही होते हैं। लेकिन धीमे धीमे धीमे धीमे जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो

0: ये पीलिया, जो आँखों का पीलापन, नाखूनों का पीलापन, ये आने लगता है। इसमें भी ये है कि यदि नॉर्मल बिलीरुबिन की हम बात करें, एक जांच की, तो ये 1 मिलीग्राम से नीचे रहता है, और जो आँखों में पीलापन आता है वो करीब 3 मिलीग्राम और उससे ऊपर आना शुरू होता है। तो 1 और 3 के बीच में तो मालूम ही नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि आपका यूरिन का कलर पीला हो रहा है। तो ये इस तरह से डिपेक्ट करता है। फिर अपना यदि जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी।
1: जी। तो अब इसमें जैसे आपने थोड़ा सा अपन पेशाब के पीलेपन की बात की, आंखों में पीलापन आने की बात की, उसमें फिर और कुछ भी लक्षण होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये मेरे को बताइए, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जो जो पीलिया, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ग्रामीण लोग जिसको पीलिया के नाम से जाते हैं, तो क्या वो पीलिया और हेपेटाइटिस को हम एक चीज़ में रख सकते हैं क्या?
0: पीलिया हेपेटाइटिस का एक लक्षण है।
1: जी, क्योंकि उसमें पीलापन दिखता है इसलिए
0: हाँ,
1: उसको हम
0: इसलिए
1: पीली।
0: उसे पीलिया कहते हैं। बाकी और जो उल्टी है, दस्त है, ये सारी चीज़ें भी उसका लक्षण है। वायरल इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, वो भी एक हेपेटाइटिस के लक्षण है। तो पीलिया उनमें से सिर्फ एक लक्षण है, न
1: जी, कोई
0: कि
1: बीमारी।
0: कोई भी। हाँ
1: लेकिन सामान्य लोग चाल की भाषा में, चूंकि वो
0: हाँ
1: एक लक्षण
0: हाँ
1: सबको समझ में आता है, सबको
0: हाँ
1: दिखता है, तो वो एक बीमारी के तौर पर प्रचलित हो गया।
0: बीमारी।
1: पीलिया कोई बीमारी नहीं है,
0: हाँ,
1: बीमारी हेपेटाइटिस ही,
0: बीमारी
1: हेपेटाइटिस
0: हेपेटाइटिस।
1: जो वायरल की वजह से होती है।
0: हाँ
1: अब आपने कुछ लक्षण इसमें बताए, अब इसकी थोड़ा सा कारणों की अगर हम जांच कर लें उसमें एक डॉक्टर के नाते, कि हमारे आसपास ऐसी क्या चीज़ है जिनकी वजह से ये वायरस हमारे अंदर आ सकता है, और जिनको अगर हम थोड़ा सा प्रिवेंटिव उसमें ले जाएं, रोकथाम की तरफ जाएं, तो एक सामान्य व्यक्ति की चूंकि जागरूकता इसमें बनती है कि भाई पहले तो बीमारी हो ही नहीं, और हो
0: यदि
1: नहीं
0: हो
1: इसके
0: गई
1: लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी,
0: एहतियात।
1: तो थोड़ा सा इसमें हम इलाज पे जाएं उससे पहले थोड़ा सा बचाव की बात हम कर
0: बचाव की
1: लें।
0: बात,
1: जी
0: हम पहले बचाव की बात से पहले हम इसके कारण भी
1: कारण पे
0: जान लें
1: जी।
0: कि ये क्यों हो जाते हैं अक्सर। जब हम कारण जान लेंगे तो उसका हम बचाव भी ढूंढ लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जो हेपेटाइटिस ए और ई है, वो यूजली ओरोफिकल रूट बोलते हैं उसे, यानी मुंह से, और लैटिन के उससे, यानी कि गंदा खान पान हुआ,
1: हाँ, पानी
0: गंदा
1: गंदा।
0: पानी दूषित हुआ, इससे होती है। और जो हेपेटाइटिस बी सी डी हैं, ये यूजुअली क्या होता है कि पहले आप ब्लड टू ब्लड, मतलब ब्लड से कांटेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे क्या होता था पहले कि सिरिंजेस, आपने देखा होगा गांव में,
1: एक ही सिरिंज से हम,
0: ग्लास की
1: हाँ
0: सिरिंज होती थी और उसे बॉयलर में डाल के और उसी से इंजेक्शन लगाते रहते थे। तो एक वो भी रीज़न है। दूसरा, जो एक लोगों में मानसिकता है, गंदी मानसिकता, कि असुरक्षित सेक्स,
1: यौन यौन संबंध
0: यौन संबंध जो
1: जी
0: रखते हैं, उनमें भी ये देखा
1: ट्रांसमिट
0: जाता
1: होती
0: है,
1: है।
0: ट्रांसमिट होता है। बहुत ज़्यादा शराब पीना, खराब पोषण होना, लो इम्यूनिटी होना शरीर की, लंबे समय, जैसे बहुत से लोगों की किडनी डायलिसिस होती रहती है, उन्हें क्योंकि उनके ब्लड भी चढ़ते रहते हैं, तो उन्हें भी ये हो जाता है। हेल्थ वर्कर्स और रेस्टोरेंट वर्कर्स, उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो भी कैरी कर सकते हैं ये चीज़। और कई बार ऐसा होता है कि विदेश यात्रा पे लोग जाते हैं, किसी देश में हो सकता है कि वहाँ हेपेटाइटिस फैली हुई हो, वायरस बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ जाने से पहले उन्हें ये निश्चित करना चाहिए कि वहाँ हेपेटाइटिस तो नहीं फैली हुई,
1: जी
0: और
1: जी
0: यदि फैली हुई है तो उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर करा के
1: प्रॉपर
0: तब
1: जी
0: जाएँ।
1: जी जी तो ये वैक्सीनेशन की बात की, मैं यही आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एक बचाव में है, तो क्या हर तरह के हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन समय है, और है तो उस किस एज में इसको अपन करवा सकते
0: हमारे
1: हैं?
0: पास इस समय हेपेटाइटिस ए और बी दो चीज़ों का हमारे पास
1: वैक्सीनेशन
0: वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक है और ये हेपेटाइटिस ए सबसे माइल्ड किस्म की
1: जी जी
0: हेपेटाइटिस।
1: जी जी
0: तो ये दोनों ही हेपेटाइटिस के टीके आजकल बच्चे के जन्म होने के साथ ही लगा दिए जाते
1: मतलब
0: हैं।
1: अपन जो टीकाकरण अभियान है उसमें
0: हाँ,
1: ये सम्मिलित हो गए
0: हो गए हैं
1: जी,
0: तो
1: तो
0: अब लगा
1: बच्चे
0: दिए
1: का तो
0: जाते
1: वहाँ
0: हैं।
1: मतलब एक तरह से प्रिवेंशन हो जाता है,
0: हाँ
1: लेकिन जो उम्र दराज लोग
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: जिनका उस समय टीका नहीं था और अब
0: हाँ
1: उस उम्र में आ गए, तो क्या इसमें वो इस समय टीकाकरण करवा सकते हैं?
0: बिल्कुल करा सकते हैं।
1: जी।
0: उन्हें 1 महीने के अंदर पे दो लगाने पड़ते हैं टीके, और फिर 6 महीने पे एक, फिर हर 5 साल पे उसका
1: एक टीका
0: बूस्टर
1: लग,
0: लगा सकते हैं। तो
1: तो
0: इस
1: मतलब
0: तरह
1: एक
0: से
1: तरह से इलाज भी है और
0: थोड़ा
1: सुरक्षा भी है, तो घबरा
0: सुरक्षा ज़्यादा है, इलाज
1: जी
0: कम।
1: जी
0: क्योंकि मैं आपसे कहूं कि हेपेटाइटिस बी का

0: कोई क्योर है, इट इज़ नॉट। इसमें सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा जरूरी है,
1: सबसे बड़ी वो
0: बड़ी
1: है, और
0: है।
1: इसीलिए शायद हम चर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए
0: इसलिए
1: दिवस
0: चर्चा
1: भी
0: भी,
1: मना रहे हैं कि
0: हाँ
1: अगर आज भी हम चाहें तो आप इससे बच सकते हैं।
0: हाँ
1: तो साफ सफाई से शुरुआत इसकी करें।
0: हाँ मेरा ख्याल है कि इसमें हेपेटाइटिस ए और बी, मैंने जैसे अभी बताया, टीके ही लगाए जाते हैं। सेफ सेक्स करें, यानी कंडोम्स का और उसका यूज़ करें। दवा लेने के लिए सुइयाँ साझा ना करें, डिस्पोजेबल
1: सिरिंज का
0: सिरिंजेस का
1: इस्तेमाल।
0: इस्तेमाल करें, और अपनी स्वच्छता बनाए रखें, इसी से हाथ धोएं, जैसे कि कोविड के समय में भी किया था,
1: हमने
0: हाथ
1: किया था
0: साबुन से
1: जी।
0: हाथ धोएं और स्वच्छ रखें अपने आप को। कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है यदि, तो उसके सामान को यूज़ ना करें। बहुत से लोग टैटू लगवाते हैं, उससे भी ये
1: हो
0: फैलता
1: सकता है,
0: हो
1: क्योंकि वो
0: सकता है,
1: निडिल
0: निडिल
1: उसमें।
0: होती है। बहुत से लोग जैसे जेल में हैं, जेल में नशा करते हैं लोग, इंजेक्शन मॉर्फिन वगैरह कर नशा करते हैं, वो भी इसके लिए लायबल हैं। तो उनकी भी जांचें, जेल में जो कैदी हैं उनकी भी जांचें रेगुलरली होनी चाहिए। जैसे अब जच्चा बच्चा है, तो जच्चा की भी जांचें, जैसे हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, सिफिलिस है, इनकी जांचें भी प्रेगनेंसी के दौरान होती
1: हो
0: रहनी
1: जानी
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: क्योंकि वो भी बच्चे को कैरी कर सकती हैं हेपेटाइटिस। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें, और फिर जब मैंने अभी वजह से बताया, यात्रा करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वहाँ वो तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है हेपेटाइटिस का।
1: आपने चर्चा भी की थी शुरुआत में, जब हम इसके प्रकार जान रहे थे,
0: हाँ
1: कि जो एल्कोहलिक भी हो सकता है,
0: हाँ
1: हेपेटाइटिस,
0: ड्रग इंड्यूस भी हो सकती
1: ड्रग
0: है।
1: इंड्यूस होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो वो भी हो सकता है। वो यही चीज़ है कि इन चीज़ों से बच के रहना है हमें, एल्कोहल ना लें।
0: एल्कोहल तो आप जानते हो खराब है, पूरा
1: हाँ,
0: लिवर
1: लीवर
0: खराब
1: के
0: करता
1: लिए
0: है, सिरोसिस भी
1: बिल्कुल
0: करता है, फिर जो है
1: अभिशाप
0: कैंसर को भी जन्म देता है। ऐसे हेपेटाइटिस बी से भी है, ये भी सिरोसिस और कैंसर तक को लाती है, इसलिए गंभीर है ये हेपेटाइटिस बी सी और ये डी। जो डी हेपेटाइटिस है वो यूजुअली बी हेपेटाइटिस के साथ होती है, सोलो नहीं होती, यानी अपने आप में हेपेटाइटिस बी अकेले
1: जुड़े
0: हो
1: हुए
0: ऐसा नहीं होता, ये
1: हैं।
0: बी और डी जुड़े हुए हैं एक तरह से।
1: तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई सावधानी हमसे ही शुरू होती है, चाहे वो आसपास की सफाई की हो, चाहे सुरक्षित व्यवहार की हो, चाहे सुरक्षित जीवन शैली की हो,
0: बिल्कुल
1: अच्छे
0: बिल्कुल
1: खान पान की हो, व्यायाम की हो, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी सब बात में आ गई। फिर भी चलते चलते, चूंकि अब आज हम इस दिवस को एब्जॉर्व कर रहे हैं, अवेयरनेस हमारा काम है, तो कुछ ऐसी बातें जो आप सामान्य जन से, सामान्य व्यक्तियों से, हमारे लोगों से जो इस बातचीत को सुन रहे हैं, कहना चाहें। हाँ, इसमें
0: हाँ मैं कहना चाहूँगा, हमारे आज जो हेपेटाइटिस डे है, इसका नारा है, चलो इसे तोड़ दें,
1: जी।
0: लेट ब्रेक इट डाउन। हम लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, लेकर सबका साथ, मिलाकर हाथों में हाथ, हेपेटाइटिस है इसका नाम, चलो इसे तोड़ दें।
1: क्या बात है।
0: रखें वातावरण स्वच्छ, करें इस्तेमाल स्वच्छ पानी खान पान, छोड़ें गंदी लत, गंदी लत से मतलब आप समझ रहे होंगे,
1: जी जी जी
0: और शराब, न करें साझा सुई और इंजेक्शन, चलो इसे तोड़ दें।
1: तोड़ दें।
0: जच्चा बच्चा का भी रखें ख्याल, नियमित जच्चा की जांच, स्वास्थ्य एवं होटल कर्मी का भी रखें ख्याल, वैक्सीनेशन है अनिवार्य, चलो इसे
1: इसे
0: तोड़
1: तोड़
0: दें।
1: दें।
0: नहीं है कोई क्योर, सावधानी और वैक्सीनेशन ही है इसका इलाज, यदि बिगड़ी हेपेटाइटिस तो है बहुत खतरनाक, चलो
1: इसे
0: इसे तोड़
1: तोड़
0: दें।
1: दें।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही दिया है नारा, लेट इट ब्रेक डाउन, मतलब चलो इसे तोड़
1: तोड़
0: दें।
1: दे, तो इस कुचक्र को जो हेपेटाइटिस का हो सकता है, चाहे असुरक्षित हमारी आदतें हों, चाहे असुरक्षित और अस्वच्छ वातावरण हो, या हमारा अपना आसपास का जो परिवेश है, जिन चीज़ों के हम कई बार आदी हो जाते हैं, चाहे शराब की लत हो, चाहे ड्रग्स की लत हो, तो ऐसे व्यवहारों से जो हमारी कमजोरी बन गए, उस कुचक्र को तोड़ना है, जिसकी डॉक्टर साहब ने हम सबसे आपसे अपील की। और इसमें हम सबका ये योगदान बनता है, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, कि कोई भी बीमारी हो, और हमने इसमें देखा भी कि जब हमारी सामूहिक लड़ाई होती है, तो कोरोना जैसी बीमारी और विभीषिका से भी हम निकल करके आए। तो ये तो समाज की ज़रूरत है कि हम कहीं भी संगठित होकर रहें, तो बहुत सारी चीज़ों
0: बिल्कुल
1: से
0: आप
1: बच
0: सही कह रहे हैं,
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: आप
1: और
0: सही
1: कहना
0: कह रहे
1: चाहें
0: हैं।
1: चलते चलते डॉक्टर साहब।
0: हाँ,

0: मैं ये कह रहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक इसे एलिमिनेट करने के लिए
1: एक संकल्प लिया है।
0: संकल्प लिया है,
1: जी जी जी
0: तो हमें उसका भी साथ देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अपील के साथ, इस मार्मिक अपील के साथ, इस हृदय स्पर्शी अपील के साथ कि इसमें हम सबका योगदान बनता है, चाहे समाज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, तो ये सब मिलकर के चलेंगे तो हम हेपेटाइटिस के इस कुचक्र को तोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप
0: बिल्कुल,
1: आए और
0: डेफिनेटली।
1: जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, आप सुन रहे थे अभी ये स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर बीवी गर्ग से ओपी सिंह की हेपेटाइटिस कारण लक्षण और निदान विषय पर ली गई भेंटवार्ता। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब कुछ प्रस्तुत हैं अगर फिल्मी गजलें।

हम भी तन्हा हैं, आप भी तन्हा। आप सुन रहे थे अभी ये गज़ल दिलराज कौर की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं ये अगली गज़ल।

वो हत के पुर्जे उड़ा रहा था, वो हत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं को रुख दिखा रहा था। आप सुन रहे थे अभी ये गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में, और आइए आप सुनते हैं ये अगली गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज़ में फिल्म हमसे मिले तुम का ये गीत। शब्द रचना हसरत व्यास हसरत की थी, संगीत नारायण दत्त का। और साथियों आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: लाल ने।
1: साथियों अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज शाम 6:15 से कार्यक्रम किसानवाणी में हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। स्टूडियो में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे आज डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था, पशुओं का खान पान, गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आप के साथ यानी कि रूबरू होंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ वेटनरी कॉलेज से हैं आप, और इनसे संपर्क करने के लिए टेलीफोन नंबर 25135 पर। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं तो फिर एसटीडी कोड जो मथुरा से बाहर के होते हैं वो अवश्य लगाएं 0565, अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान ले सकते हैं। समय याद रखिए, आज शाम 6:15 से 6:45 तक कार्यक्रम किसान वाणी में। तो ये सूचना समाप्त हुई और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म हीरो का ये गीत। लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे।

मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ में आपने सुना अभी भ्रष्टाचार फिल्म के इस गीत को। आनंद बख्शी ने शब्दों में इस गीत को ढाला था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जवानी दीवानी के इस गीत को। लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज संध्या 6:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी में हैलो किसानवाड़ी। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। स्टूडियो में जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ, वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था, पशुओं का खान पान, गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं यदि समस्याओं के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होइए, यानी कि 25:30-135 पर संपर्क कीजिए। आप जो मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वो स्टडी को डबल चलाएं 0565 अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं विशेषज्ञ से और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समय याद रखिए आज शाम 6:15 से 6:45 तक सूचना समाप्त हुई। और आइए आप सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

किक फिल्म में ये आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और नक्श अजीज की। आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे गरिमा अनेजा और राहुल गांधी की आवाज़ में फिल्म रिवॉल्वर रानी का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में क्रिएचर 3 फिल्म का गीत। अगला गीत सुनने से पहले सूचना सुन लीजिए। आज संध्या 6:15 से आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी। ये फ़ोन इन कार्यक्रम में आज आप शामिल हो सकते हैं। विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ, वेटनरी कॉलेज मथुरा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल एवं रोग जैसे पशुओं की आवास व्यवस्था, पशुओं का खान पान, गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, अफरा, मच्छर एवं मक्खियों से सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर यानी 25 30 135 पर संपर्क करके इसका जो मथुरा से बाहर के श्रोता है स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565 अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर सीधे आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं विषय विशेषज्ञ से। समय ध्यान रखिए कृपया, आज शाम 6:15 से 6:45 तक सूचना समाप्ति। और अब कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: रेखा भारद्वाज, सुजाता मजुमदार की आवाज़ में आपने सुना अभी दिल्ली 6 फिल्म का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की राधा।

0: आप अभी सुन रहे थे फिल्म ए बी सी डी का ये गीत, बादशाह दिव्या कुमार, दलेर मेहंदी और तनिष्क सिंघवी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है साथियों। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं अपनी फरमाइश के गीत हेलो।
2: हाँ भैया जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, योगेश डंगरे बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।

0: योगेश भाई कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: क्या हालचाल है आपका?
1: बढ़िया है, भी अच्छा है।
0: कार्यक्रम हमारा सुनी रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, प्रतिदिन।
0: जी जी और क्या क्या रिकॉर्ड बना दिए सर आपने?
1: फिलहाल तो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड ही बना है भैया, और कुछ होगा तो वो भी देखेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं के उसमें तो आपका बहुत बड़ा नाम है।
1: जी बिल्कुल भैया, ये तो केवल एक छोटा सा शौक ही तो था भैया।
0: हाँ, बहुत बड़ा बन गया आप, ये
1: बहुत बड़ा बन गया है।
0: शुभकामनाएं आपको बहुत सारी।
1: जी भैया धन्यवाद।
0: आज क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में सर?
1: फिल्म है जंजीर और के बोल है यारी है इंसान मेरा यार मेरी जिंदगी।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं योगेश भाई आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह आपसे मुखातिब हो रहा हूँ जी।
0: स्वागत करते हैं जी आपका कार्यक्रम में।
2: सर आप कैसे हैं? टीम कैसी है?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए अपने बारे में।
2: हाँ सर बिल्कुल सही हूँ।
0: चलिए स्वस्थ बने रहिए, अच्छे रहिए।
2: आज की फिल्म है सर जंजीर।
0: जी
2: यार ये ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
0: ठीक है नेत्रपाल जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: मोहन सिंह, गांव ड्रावली
1: जी। कहाँ पड़ता है आपका गांव?
0: गोवर्धन के पास है।
1: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: खेती करते हैं जी सर।
1: हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं भाई साहब?
0: मैं सुन रहा हूँ जी सर 1972 से।
1: अच्छा अच्छा
0: जी हाँ,
1: बहुत पुराने श्रोता हैं आप हमारे। आज क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में आपकी, बताइए।
0: दुनिया बनाने वाले क्या थे उनमें समाही।
1: ठीक है, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। सर,
0: नमस्कार।
1: आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंडौली से बोल रहा हूँ। सारस्वत जी,
0: बनिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत जी, कैसे हैं आप और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम?
0: सब लोग अच्छे हैं सर, दुआएं हैं आप लोगों की।
1: सर, गर्मी एक बार फिर से लौटने लगी है, बारिश की संभावना फिर थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में।
0: हाँ, उमस इस समय काफी है वातावरण में।
1: बहुत ज्यादा उमस भरी गर्मी है सर, और धूप 2 दिन से एकदम खिली हुई निकल रही है, तो गर्मी का एहसास और ज्यादा हो रहा है लोगों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जब बारिश होने लगेगी तभी कुछ राहत मिलेगी।
1: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से करीब 12 किलोमीटर एक उधर साइड से गांव पड़ता है, वहाँ आधा घंटे बारिश हुई है लेकिन यहाँ बूंद नहीं पड़ी।
0: हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, एक ही शहर में बारिश होती है एक तरफ, थोड़ी दूर पे नहीं होती है। आजकल ऐसा
1: बिल्कुल
0: भी
1: सर,
0: हो रहा है।
1: एक किलोमीटर का फासला हो जाता है, 1 किलोमीटर पे झमाझम बारिश और 1 किलोमीटर पे कुछ नहीं।
0: लवानिया जी, आज क्या
1: सर,
0: फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में बताएं।
1: तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। अलका याग्निक और उमा सानंद जी का गाया हुआ गाना है। अंत में सर, आप सभी को यानी आकाशवाणी मथुरा परिवार को और सभी श्रोताओं को मुड़िया पूर्णो यानी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, और श्रावण मास प्रारंभ की बहुत बहुत बधाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर गुरु पर्व की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत जी, नमस्कार।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो आकाश मारी,
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ अड़िंग से। सर
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद सर, कैसे हो आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं आप?
0: जी सर हम भी अच्छे हैं और हमारे परिवार में भी सभी लोग अच्छे हैं सर।
1: जी जी, आजकल तो गांव में खूब रौनक होगी।
0: जी जी सर बिल्कुल, परिक्रमार्थियों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और इस समय अड़िंग का जो मार्ग है गोवर्धन मार्ग बड़ा ही श्रद्धालुओं से गुलजार हो रहा है।
1: हाँ।
0: तो ऐसा लगता है कि कुछ हिम्मत मतलब वाहनों की लाइट से ऐसा लगता है कि दिन निकला हुआ है और लगातार जाते हुए श्रद्धालु जयकारे देते हुए जाते तो बड़ा ही आनंदित और अच्छा लगता है उस समय।
1: शाम के वक्त तो बहुत ही लोग गोवर्धन प्रस्थान करते हैं।
0: जी सर।
1: जी जी, अच्छी बात है, साल में एक बार ये पर्व आता है। सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
0: जी मैं भी सर आकाशवाणी परिवार और अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को और हमारे पूरी ब्रजभूमि में पधारे बाहर से आए श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सर।
1: जी आज क्या फरमाइश रहेगी अशोक जी, बताइए।
0: सर गुरु पूर्णिमा से ही स्टार्ट हो जाता है सावन का महीना।
1: जी
0: और सावन का महीना हमारे ब्रज में बहुत ही उत्साह लेकर आता है और मंदिरों में झूले और घटाओं के दर्शन होते हैं। सर एक गाना है फिल्म ब्रजभूमि से,
1: जी
0: झूला तो पड़ गया मुआ की डाल पे।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।
1: नमस्कार।
0: वेलकम सर।

0: हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। तबीयत खराब है सर, दवाई गोली खाया हूँ सर, 5% बचा है।
0: क्या हो गया
1: सर? बुखार सर्दी खांसी एकदम सर, अभी मौसम वायरल फीवर चल रहा है सर, यहाँ एकदम अजीब टाइप का।
0: हाँ, बारिश का आगमन हो रहा है, गर्मी बीच बीच में हो जाती है तो दिक्कत हो रही है।
1: जी सर, गोली दवाई खाया हूँ सर, गुरुवार से मेरा तबीयत खराब हुआ है सर, गुरुवार से इसके बाद दवाई गोली लगातार खाया हूँ।
0: जी
1: अभी
0: जी
1: 5% बचा है सर, और थोड़ा सा गर्म टाइप लग रहा है,
0: हाँ, हमारी
1: लेकिन
0: शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।
1: जी सर,
0: जी, आज क्या फरमाइश रहेगी इंद्रभान जी?
1: आज है सर रहेगी, फिल्म का नाम है सर मंजिल का, है ना गाना, रिम झिम गिरे सावन उलग
0: जी
1: उलग ले जाए, गाय किशोर कुमार। सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी स्टाफ कर्मचारी को। ठीक है सर, धन्यवाद।
0: सुनवाते हैं इंद्रभान जी आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: बहुत धन्यवाद।
1: फोन फैमिली के सर, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था पत्थर के फूल। संगीत रविंद्र रावल का था, संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म क्रिएचर का ये गाना। इसके बोल लिखे थे टोनी कक्कड़ ने, संगीत भी टोनी कक्कड़ का ही था। और लीजिए अब सुनते हैं फिल्म।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म रंग का ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और SMS में जो सबसे पहले संदेश हमारे पास आया है, वो हमारे पास आया है जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, और लिखने वाले हमारे श्रोता किशोर वानखेड़े, उषा, विशाल, राज गवई और राजवीर गवई। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है गंजुड़वारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही ने। ये संदेश हमारे पास आया है करणवीर हाउस मुच्चो कैचिया बठिंडा पंजाब से, परम सिंह जौड़ा, मंजीत, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजीत का। ये संदेश हमें लिख भेजा है गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनके सभी परिवारजनों ने। अगली फरमाइश शार्दुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चित्रकला रेमाड़ की। ये संदेश तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजाल लल्ला, फरहान लल्ला, समाइरा आजमीन और इनके सभी परिवारजन। ये संदेश आया है श्री रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। अगली फरमाइश सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार।

सोनम वर्मा की। अगली फरमाइश वाइट फील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश हमें लिख भेजा है मधुबनी बिहार से मोहम्मद सबीर परवाना, मोहम्मद जहीद अली, मोहम्मद जाहिद अली, शाहिद अली और इनके सभी परिवारजनों ने। ये संदेश स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया का। अगला संदेश रिंगनी छत्तीसगढ़ से देश वर्मा, करुणा वर्मा का। ये फरमाइश आई है गणेशपुर गंजुडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साया फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान की। अगला संदेश चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। ये संदेश हमें लिख भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामिका, दिलीप अक्षर, रुद्र, रुचिका और इनके सभी परिवारजनों ने। अगला संदेश नांदुरा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, विशाल गवलिन, सोनाली, समर्पण और भक्ति गवली का। ये संदेश बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। कलानौर से लिखने वाले श्रोता नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। अगला संदेश उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसी तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद का पश्चिम बंगाल से। ये फरमाइश हमारे पास आई है गोविंद बिहार, गोविंदपुरा, अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा, मिखाइल और जैनब मुजावर की। ये संदेश सीतामढ़ी से बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, अकरम हुसैन प्रिंस, पूनम कुमारी शर्मा, मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन का। ये फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ यह गीत, फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश आया है जिला गाजीपुर से। सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल का ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका, गजेंद्र, हियांश कुमार चंदन। अगली फरमाइश आई है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउलक डावर, भट्टापारा से सोहन जोशी। और ये संदेश हमें लिख भेजा है महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। और ये संदेश सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश छत्तीसगढ़ से

साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीप कुमार का। अगला संदेश जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का। यह संदेश गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, रचिता, केशु और रिधान खुराना। अगला संदेश नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय का। अगला संदेश खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविका सिक्का। ये फरमाइश आई है ललितपुर से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और इनके सभी परिवारजनों की। ये संदेश दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा का। अगली फरमाइश धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बाबू की। ये संदेश फुटानी चौक नरन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, आराध्या और लल्लू पंडित का। ये फरमाइश आई है महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभ प्रसाद, आर्डम, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन ने। ये संदेश आया है पंढरपुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और इनके सभी परिवारजन। ये फरमाइश कोयले बस्ती पुनावाले से अजय सोनवानी, करिश्मा, अविका, साइशा, सानू कुमार और अर्चना कुमार। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। ये संदेश पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमिला बंछोर का। अगली फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है भीगी पलकें।

0: और ये संदेश हमें लिख भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और इनकी सभी संगी साथियों ने। अगला संदेश खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर, गौरव और इनके सभी परिवारीजन। ये फरमाइश कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिंगलानी और बबीता मिंगलानी का। ये संदेश आया है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण और श्रीनिका श्रीनिजा का। अगला संदेश ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और इनके सभी परिवारीजन। ये फरमाइश करीम नगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई किरण और इनके सभी संगीत साथियों की। और ये जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो आया है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनया करमकर का। अगला संदेश हमें लिख भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़ ने। ये फरमाइश आई है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाणे, वकील वाल्मीकि धाणे, निनाजी और स्वप्निल धाणे की। अगला संदेश मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। और अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश ने। ये संदेश हमारे पास आया है राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव और इनके सभी परिवारजनों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है बाबुल की गलियाँ।
1: चीज मांगते हैं
2: क्या

0: बताओ।
1: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
0: अच्छा जी।
1: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
0: तो अगले इतवार
2: और ये संदेश उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से लिखने वाली साथी हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनके सभी परिवारीजन। ये फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो की। अगला संदेश हमें लिख भेजा है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, सोनम और अनामिका सिंह ने। ये फरमाइश महाराष्ट्र से श्री राम गोधली, उषा वैष्णवी, युवराज गोधली की। अगला संदेश मधुबनी एक्सटेंशन कुशेश्वर कांति गुप्ता का, रुद्रा भाई गुप्ता, रानी, मुकेश, रश्मि, संजय, नीलम, विजय और रूपा। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा का। अगली फरमाइश आई है खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार वोडाना, सुदामा नगर, खंडवा से लक्ष्मी, नदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और इनके सभी संगीत साथी। और ये संदेश सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, संजीव, बंटी जिंदल और इनके सभी संगीत साथी। और भोपालगढ़ राजस्थान से लिखने वाले श्रोता धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिवार। अगला संदेश जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश और वसुंधरा का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मुंदीचक भगलपुर से दिलीप कुमार सोनी। अगला संदेश मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजया तायड़े। ये फरमाइश आई है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, वनीता, आरती प्रसाद, सोनल, सिया और इनके सभी परिवारीजनों की। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है बहारों के सपने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं मेघ श्याम।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे मेघ श्याम। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक

0: पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। कार्यक्रम मंथन का समय होगा रात्रि 9:45। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक जानकारी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मयंक, भेंट करता होंगी सुरभि शर्मा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसमें आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राम सागर,

संध्या 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा। सावन और गुरु पूर्णिमा के विषय पर कवि होंगे श्रीनिवास।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। हरी भरी वादियाँ, सुंदर ये नज़ारे, कल कल बहते झरने लगते मन को प्यारे, चहकते परिंदे लहराती हवाएं, धरती की गोद में जीवन मुस्काए, फूलों की खुशबू नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंगों को और निखराएं। बात सही है, हमारी प्रकृति ना जाने कितने रंगों से भरी हुई है, यह हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए जल देती है। हमारे चारों ओर जो हरा भरा नज़ारा है वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। हमारा जीवन ही पृथ्वी पर प्रकृति के कारण संभव है। सूरज हमें हर दिन प्रकाश और जीवन के लिए ऊर्जा देता है, वही नदियाँ और पहाड़ प्रकृति की शान और अनमोल उपहार हैं। एक छोटा सा फूल भी प्रकृति की गोद में ही खिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पेड़ पौधे और हरे भरे वन प्रकृति की सुंदरता से हैं, क्योंकि वन या कहें जंगल की सुंदरता हरी भरी प्रकृति से ही बढ़ती है। लेकिन जिस तरह पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, तो हमें ये सब कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है। इन्हीं सभी बातों को देखते और समझते हुए हर साल 28 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।

विश्व प्रकृति संरक्षण का दिवस का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षय, वनों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण आदि। ये समस्याएं न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी खतरनाक है। इस प्रकृति को सुरक्षित रखना है तो हम सभी को मिलकर इसकी पहल करनी होगी। सबसे पहले हमें पानी की बर्बादी को रोककर जल संरक्षण करना होगा। सबसे हानिकारक प्लास्टिक का त्याग करके तथा इसका उपयोग कम करके इसे रिसाइकलिंग करके प्रयोग में लाना होगा। सबसे मुख्य बात, वनों की कटाई को रोककर वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जिस तरह हम पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना संभव है। इसलिए समय रहते संभल जाएं। हमें प्रकृति के हिसाब से जीना है, ना कि प्रकृति को हमारे हिसाब से जीना है। श्रोताओ, पेड़ पौधे और इस हरियाली से ही प्रकृति का रूप निखरता है। फिर हम थोड़े मतलब के लिए इस रूप को कैसे छीन सकते हैं? इसलिए इस प्रकृति के रूप को यूं ही निखरने दें, इनका पूरा सम्मान करें। इनका सम्मान ही सही मायने में प्रकृति का सम्मान होगा। फिर से मैं ये सही लाइनें आपसे कहना चाहूँगी। हरी भरी वादियाँ, ये सुंदर नज़ारे, कल कल बहते झरने लगते मन को प्यारे, चहकते परिंदे, लहराती हवाएं, धरती की गोद में जीवन मुस्काए, फूलों की खुशबू, नदियों की कल कल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल। आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं और एक प्यारा सा गीत सुनें।

0: हालात ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। जी, कभी-कभी क्या होता है, बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि उस समय कुछ समझ नहीं आता, क्या करें, कैसे करें। उस समय हिम्मत ही ऐसी होती है जिससे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और बात जब अपने स्वास्थ्य की हो तो ये एक चिंता का विषय बन गया है। कहते हैं ना, स्वास्थ्य जीवन के हर खुशी का आधार है। वही लोग जिंदगी में सफल हैं जिन्हें खुद से प्यार है। आप इन सभी के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के टाइम को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी ने हमें घेर रखा है। ये बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो अच्छा खासा पैसा तो खर्च कराती हैं, बल्कि हमें दवाइयों पर डिपेंड कर देती हैं। ये सब देखते हुए आज के दिन यानी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। ये दिवस वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो एक गंभीर बीमारी लीवर की सूजन है और गंभीर लीवर रोग और लीवर कैंसर का कारण बनती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम अज्ञात तीव्र हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों से निपटने और इन संक्रमण के कारण को समझने के लिए प्रयासरत है। इतनी जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता डॉक्टर मयंक से। इनसे भेंट कर रही हैं सुरवी शर्मा।
1: अश्वता, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, आखिर क्या है ये बीमारी और इस बीमारी को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, और इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मयंक सर।
2: आकाशवाणी के श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस दिवस को हम इस बीमारी के लिए जागरूकता के रूप में मनाते हैं, जिससे कि जो हमारे आम जनमानस है वो इस बीमारी के बारे में जान सके, समझ सके और इससे बचने के उपायों को अपना सके। श्रोताओ, जैसे नाम से ही विदित है, ये एक ऐसा वायरस जनित रोग है जो हमारे लिवर को हेपेटिक मतलब हमारे लिवर को खराब करता है, और लिवर की कार्यप्रणाली ऐसी है कि वो हमारे लिए पूरा एक तरीके से ऊर्जा का घर है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाना, हर तरीके की सामान को बनाना, चाहे वो हमारे मसल्स हो, चाहे हमारे अंग प्रत्यंगों में किसी भी तरीके की जो चीजें जरूरत होती हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका सबका निर्माण और जो भी उसका प्रसंस्करण होता है वो हमारे लिवर में ही किया जाता है। अगर ये लिवर किसी भी प्रकार से अपने कार्य क्षमता को खो देता है तो हमारे जीवन में एक बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है और हमारी जो दैनिक हमारी जो बॉडी की क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो छिन्न भिन्न या अव्यवस्थित हो जाती हैं। और ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसमें किसी मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो अभी तक लाइलाज है। हेपेटाइटिस बी का कोई ऐसा इलाज अभी तक हमारे विज्ञान से संभव नहीं है जिससे कि हम इस बीमारी को सुचारू रूप से हटा सकें या खत्म कर सकें। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि वो इस बीमारी के दुष्परिणामों से ज्यादा लंबे समय तक बचा रहे। इस कारण हम

बीमारी का कोई भी क्योरेबल इलाज संभव नहीं है जिससे कि हम इसको पूरी तरीके से सही कर सकें, पर जिस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो गया है हम उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसको धीरे कर सकते हैं और उसकी जो लाइफ स्पाइन है उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी हमारे सामने लक्षण उत्पन्न होते हैं उन लक्षणों में हम आराम दे सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।

0: काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक घटना में आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे बहुत ही पॉपुलर अभिनेता हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको भी एक ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ने से ये हेपेटाइटिस बी नामक रोग हो गया था, और अभी तक आप उनको देखते हैं कि वो अपने इलाज के साथ में बड़े स्वस्थ रूप से और सामान्य जिंदगी को जी रहे हैं। श्रोताओं, हेपेटाइटिस बी जो है वो तीन प्रकार से फैलता है। नंबर एक, खून के चढ़ने की वजह से या ब्लड के मिलने की वजह से। नंबर दो, आपको बाय बर्थ हो सकता है, माँ से, अगर संक्रमित माँ है उससे संक्रमित बच्चे को पहुंच सकता है। और तीसरा कारण है वो है हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एक पुरुष या महिला के बीच में आपस में एक दूसरे से जा सकता है। श्रोताओं, हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, जिस टीकाकरण के वजह से हम हेपेटाइटिस बी अगर हमारे शरीर में आता भी है तो उसको हम उसके प्रति एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो बढ़ नहीं पाता और वो खत्म हो जाता है। तो मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण है वो करा लें। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है, सभी बच्चों को लगाया जाता है अनिवार्य रूप से। जो भी बच्चे हैं, जो आज बच्चे पैदा हुए हैं या जो अभी तक अभी छोटे बाल्यावस्था में हैं, श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि उन सभी को टीकाकरण कराएं। जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचाएं, साथ के साथ हेपेटाइटिस का भी टीकाकरण हमारे बच्चों के लिए किया जाता है, उसका भी लाभ उठाएं। वो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसको हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, और उसके बाद ये धीरे धीरे संक्रमित होते हुए सभी शहरों में और सभी देशों में फैल गया, और इंडिया में भी इसी तरीके से आया है। हेपेटाइटिस बी के अन्य भी कई प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इस समय सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से हम इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और हमारे जो और श्रोताओं को एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, इसके कई चीज़ें बिल्कुल समान हैं, दोनों में किसी चीज़ का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन एचआईवी का टीकाकरण नहीं है, हेपेटाइटिस का टीकाकरण उपलब्ध है। तीनों के फैलने के तरीके लगभग समान हैं।
1: भी आपने सुना हेपेटाइटिस का डॉक्टर मयंक सरस्वती, अब हमने सोचा कि अगर कोई गर्भवती महिला इस बीमारी से पीड़ित है तो क्या बच्चे को भी बीमारी हो सकती है, और किस प्रकार इससे बचा जा सकता है, इस बारे में हमें बतानी डॉक्टर जी, बताइए हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है अगर गर्भवती महिला को है तो क्या बच्चे को हो सकती है, और कैसे ये बीमारी फैलती है, इसके बारे में विस्तार से श्रोताओं को बताइए।
2: हाँ श्रोताओं, आपको मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सारस्वत बोल रही हूँ, और आज मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, गर्भवती स्त्री में जो फैलता है हेपेटाइटिस बी, उसके बारे में आपको बताती हूँ विस्तार से। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस जनित रोग है, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं डॉक्टर साहब, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, खून और अन्य प्रकार के जो हमारे शारीरिक द्रव है उससे ये रोग फैल जाता है। अब आपको बताती हूँ मैं गर्भवती स्त्री में ये रोग किस तरह से बच्चों में फैलता है, गर्भवती स्त्री में उसके बच्चे को ये किस तरह से फैल सकता है। वैसे गर्भकाल में तो ये बच्चा है गर्भवती स्त्री के अंदर ही बिल्कुल सुरक्षित रहता है, लेकिन जन्म के समय और बाद में जैसे माँ का दूध पिलाती है उससे और अन्य प्रकार से ये रोग फैल सकता है। जन्म के समय 7% ये बच्चे को खतरा रहता है, लेकिन यदि बच्चा केवल माँ का दूध पिए या केवल ऊपर का दूध पीता है तो भी इसकी संभावना 30-40% तक हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों को हम दोनों प्रकार का दूध दे दें, जैसे ऊपर का दूध भी हम पिलाएं और माँ का दूध भी पिलाएं, तो उसको अत्यधिक संक्रमण हो सकता है इस बीमारी से। अतः महिला में गर्भ धारण करने के समय ही सही देखभाल करना चाहिए, सभी प्रकार की चिकित्सीय जांच उसको करवानी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस संक्रमण से बचा सके। हेपेटाइटिस बी हेतु जो जरूरी इलाज है और उसके उपाय हैं, उसमें स्त्री में और बच्चे में कराए जाने चाहिए। श्रोताओं, सभी गर्भवती स्त्रियों का अस्पताल में प्रसव कराना चाहिए। कुछ स्त्रियों का हम देखते हैं कि घर में ही प्रसव करा दिया जाता है, तो इससे उसका संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। और प्रसव पूर्व सभी प्रकार की जांच करानी चाहिए अस्पताल में, आजकल सरकारी अस्पतालों में तो ये निःशुल्क जांच है ना, जिसमें हेपेटाइटिस बी सहित सारी तरह की जांच सम्मिलित होती है। बच्चे को यदि हेपेटाइटिस बी का टीका सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से लगाया जाता है, मतलब इसमें गर्भवती स्त्री और बच्चा दोनों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, तो मैं माताओं से ये निवेदन करती हूँ कि वे बच्चे को प्रथम 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही।

0: पिलाएं, इससे जो संक्रमण महिलाओं से जो बच्चे में संक्रमण का खतरा है बहुत थोड़ा होगा, लेकिन अन्य प्रकार से बचाव तो हो ही जाएगा और आर्थिक रूप से भी परिवार को दूध खरीदने में खर्चा कम होगा। श्रोताओं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हेपेटाइटिस बी के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियों में अन्य चिकित्सक से सलाह जरूर लें और इसको छुपाए नहीं, जानकारी हमें इस रोग से आगे बचा सकती है।
1: अब आप सुनिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को जो जानकारी दे रहे हैं हेपेटाइटिस के विषय।
2: पिछले कुछ समय से हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा एवं भयानक रोग के रूप में उभर कर आया है। आम बोलचाल की भाषा में हम संक्रमित हेपेटाइटिस को पीलिया के नाम से जानते हैं। इसका कारण एक प्रकार का वायरस होता है जिसे हम हेपाडाना वायरस कहते हैं। यह शरीर में प्रवेश करने के बाद विशेष तौर पर लिवर को नुकसान पहुंचाता है जिससे लिवर में सूजन आ जाती है। यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर इसकी संभावना छोटे शिशुओं को देखने को मिलती है। यह 7 प्रकार का होता है, ए से लेकर जी तक। इनमें से केवल सी और खास तौर पर बी अधिक संक्रामक होता है। यह रोगी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब इसके कुछ लक्षण हैं कि हेपेटाइटिस बी के क्या लक्षण हैं, कि हमें मालूम पड़ जाए कि हेपेटाइटिस बी आखिर क्या चीज है। तो कुछ है, हेपेटाइटिस बी होने पर शरीर एवं आंखों का रंग पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग पीला होना, घबराहट, बेचैनी, भूख न लगना, वजन का गिरते जाना और कुछ रोगियों में बुखार की शिकायत भी देखने को मिलती है। कुछ रोगी हेपेटाइटिस बी कोमा की स्थिति में ही चले जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 30% लोग ही बच पाते हैं। अच्छा, इसका संक्रमण कैसे फैलता है? इसका संक्रमण दूषित रक्तनाली से, एक ही उस्त्रे एवं सुई से, एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रयोग करने से, चुम्बन लेने से, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने से और गर्भवती माँ से बच्चे को भी हो सकता है, या फिर शरीर से निकले किसी तरल पदार्थ जैसे लार, खून की बूंद, पसीना आदि को छूने से भी हमें हेपेटाइटिस बी का संक्रमित हो सकता है। अब इसके कुछ बचाव हैं, जैसे कि हमको हेपेटाइटिस बी ना हो, और उपचार। इसका बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम टीका लगवाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में यह टीका लगवा सकता है। यह 3 टीकों का कोर्स होता है। यह टीका 96% तक प्रभावशाली होता है और इसका असर भी जीवन भर रहता है। अगर गर्भवती माँ को यह रोग है तो बच्चे को जन्म के पहले दिन पहला टीका, उसके दूसरे महीने दूसरा टीका और 6 महीने बाद तीसरा टीका लगवाना चाहिए। रक्त छाड़ने से पहले उसकी जांच कर लें, उसमें कोई संक्रमण तो नहीं है। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। शरीर से निकले किसी तरल पदार्थ जैसे उल्टी, लार, पसीना, थूक, खून की बूंदें हाथ को ना छुएं। पानी उबाल कर पिएं एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर हम हेपेटाइटिस बी है तो हम क्या करें? रोगी को आराम की सलाह दें। भोजन में प्रोटीन एवं चिकनाई का ध्यान रखें। प्रतिदिन 200 से लेकर 300 ग्राम तक ग्लूकोज का सेवन कराएं। चावल, उबले आलू, गन्ने का रस रोगी को पिलाएं। इसके साथ साथ बी कम्प्लस एवं विटामिन सी की गोलियां भी देते रहें और किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लें और विशेष तौर पर स्वच्छता का ध्यान रखें।
3: जी, डॉक्टर मयंक ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी हेपेटाइटिस के बारे में कि खान पान में स्वच्छता जरूर रखें, घर का पौष्टिक भोजन ही लें, समय समय पर अपनी जांच कराते रहें। यदि समय रहते हम इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम केवल हेपेटाइटिस नहीं बल्कि ना जाने कितनी बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो ये तो थी हमारी वार्ता और इस समय आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत कुछ इस तरह, कौन कहता है प्यार नशा बन जाता है, कौन कहता है प्यार नशा बन जाता है, कौन कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है।

मैनू, जैसे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है, इस मौसम में नमक या चीनी में सीलन आई जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस डिब्बे में आप नमक या चीनी रख रहे हो उसमें नीचे एक कागज़ बिछा दें, उसमें नमी नहीं आएगी और सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, बेसन या मैदा भी ख़राब हो जाते हैं ऐसे मौसम में, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें इस मौसम में फ्रीज में रखें तो उससे वो सुरक्षित रहेंगे। तो अब हमारी घड़ी इशारा कर रही है, जाने का समय हो गया है, और चलते चलते बस मैं इतना ही कहूँगी, ऊपर वाला तो आपका इंटेंशन ही देखेगा, चाहे प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो। तो आप हमारा इंटेंशन देखें, इंटेंशन हमारा यही है कि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के गाए फिल्म कच्चे धागे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल टुडे इन फाइव डिस्ट्रिक्ट्स चंबा कांगड़ा मंडी शिमला एंड सिरमौर अ येलो अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल हैज आल्सो बीन इशूड फॉर ऊना बिलासपुर हमीरपुर सोलन एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स इन व्यू ऑफ द फोरकास्ट ऑफ हैवी रेनफॉल ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द पांवटा साहब सब डिवीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ऑर्डर्ड टू रिमेन क्लोज्ड टुडे अकॉर्डिंग टू द स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 108 रोड्स अक्रॉस द स्टेट रिमेन ब्लॉक्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड हैवी रेन रितेश कपूर आकाशवाणी न्यूज शिमला
1: Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra routes have been blocked at several locations due to landslides. Keeping the safety of pilgrims in mind, the Char Dham Yatra has been suspended till tomorrow. Continuous rainfall has caused the water level of major rivers in the state to rise. The state government is closely monitoring the situation and disaster response and rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both Houses of Parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया सुनामी की चेतावनी जारी और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज ड्रोन रिकॉर्डिंग कैमरा फुटेज वायरलेस संचार रिकॉर्ड पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए पीठ ने दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं आइए सुनते हैं

0: this was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@

एचआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT MCIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकाल कर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
2: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गंवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ

0: साफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
0: जी।
1: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
1: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
0: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
1: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
8: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
8: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
8: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
9: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
9: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
9: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
5: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता

0: दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
1: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
2: दीदी लता, दीदी लता।
1: लता?
3: जी दीदी।
1: क्या ये लता?
3: जी दीदी।
1: अरे नहीं।
3: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
1: अच्छा,
3: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
1: अच्छा
3: जी दीदी।
1: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं? इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए।

माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर के लोग विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाने के लिए एकजुट होते हैं।

दिवस के रूप में मनाने के लिए एकजुट होते हैं। ये दिन हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। ये एक आह्वान है जो व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों से आग्रह करता है कि वे हमारी धरती के कल्याण को सुनिश्चित करने वाली स्थायी प्रथाओं की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षय, वनों की कटाई, प्रदूषण और पर्यावरण विनाश जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर यह समस्या न केवल वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को बल्कि मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी खतरे में डालती है। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोग, सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देकर इन खतरों को कम करना है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और अपने पारिस्थितिक पदचिन्ह को कम करके हम मानवता और पर्यावरण के बीच अधिक लचीला और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए और भी ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को एक सही रूप में मना सकते हैं। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को मित्रों, परिवारों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। अपने दैनिक जीवन में पानी, ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण करें। पुनर्चक्रण खाद बनाने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करने का अभ्यास करें। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित संगठनों को दान दें या उनके साथ स्वयंसेवक के रूप में काम करें। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संरक्षण, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करें। अपने समुदाय में वृक्षारोपण कार्यक्रमों, समुद्र तटों की सफाई, वन्य जीवों की निगरानी कार्यक्रमों और अन्य संरक्षण गतिविधियों में भाग लें। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हुए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे आज के कार्य ही भविष्य की दुनिया का निर्माण करते हैं। संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पृथ्वी की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने और सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास में अपना योगदान देता है। आइए मिलकर अपने ग्रह को अनमोल संसाधनों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों। आइए संरक्षण की ऐसी संस्कृति को अपनाएं जो प्रकृति के अंतर्हीन मूल्यों का सम्मान करे और मानवता तथा प्राकृतिक जगत के बीच में सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा दे। इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर आइए संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और अधिक टिकाऊ एवं लचीले भविष्य की ओर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा दें।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: आज करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अब बात करते हैं देश की एक भाषा उर्दू के लिए। उर्दू भाषा के संरक्षण और विकास के लिए बहुत से प्रमुख संस्थान हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म, शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। भारत सरकार की मुख्य संस्था जो उर्दू प्रचार प्रसार और वित्तीय मदद के लिए काम करती है, उसका नाम है NCPUL, राज्य उर्दू अकादमी। विभिन्न राज्यों में स्थापित अकादमियाँ जो उर्दू पुस्तकों, सम्मेलनों और पुरस्कारों को बढ़ावा देती हैं। उर्दू डिप्लोमा कोर्स भी आप कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से 1 वर्षीय उर्दू सीखने का पाठ्यक्रम सरकार के द्वारा कराया जाता है। NCPUL का आधिकारिक मोबाइल ऐप, जिस पर मुफ्त डिजिटल उर्दू पुस्तकें उपलब्ध हैं। उर्दू दुनिया और बच्चों की दुनिया जैसी मासिक पत्रिकाएं भी आपको ऑनलाइन या मार्केट में खरीदेंगे तो मिल सकती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे उर्दू भाषा का हम अध्ययन कर सकते हैं और दैनिक बोलचाल की भाषा में या अपने कामकाज की भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं कानूनी वार्ता। सूचना का अधिकार जाने वार्ताकार हैं सपना सारस्वत।
1: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाया है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। लोकतांत्रिक देश की इस प्रणाली में नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि लोक प्राधिकारी गण सरकारी कामकाज कैसे कर रहे हैं। जनता यदि जागरूक है और

सरकार के कामकाज पर नजर रखती है तो इससे भ्रष्टाचार व निरंकुशता पर अंकुश लगता है और राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। इसलिए ये जरूरी था कि जनता को सूचना का अधिकार दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिकार को भारतीय संविधान की धारा 19(1)(a) के अंतर्गत मूलाधिकार माना है। चूंकि कुछ बातें संवेदनशील होती हैं और सरकार का कुशलता से संचालन हो सके, इसके लिए जरूरी है कि गोपनीयता बनाई रखी जाए। एक तरफ जनता को सूचना का अधिकार, वहीं दूसरी ओर राज्य की गोपनीयता, ये दोनों परस्पर विरोधी हित हैं। अतः इन दोनों में परस्पर सामंजस्य करते हुए सन 2005 में हमारे देश में सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर कतिपय सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकार के रूप में जनता के प्रत्येक नागरिक को दे दिया गया। पिछले कुछ दशकों से देश का प्रमुख नागरिक वर्ग सूचना के अधिकार की मांग कर रहा था। आखिरकार भारत की संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति जी ने 15 जून 2005 को इस अधिनियम पर अनुमति दे दी और भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट में यह कानून 21 जून 2005 को प्रकाशित किया गया। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अधिनियम की धारा 2(j) में कहा गया है कि किसी लोक अधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन पहुंच योग्य सूचना का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत ये बातें भी शामिल हैं कि यदि आप किसी कृति, दस्तावेज या रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों पर टिप्पणी या उनकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, जो भी सामग्री मौजूद है उसकी प्रमाणित जानकारी ले सकते हैं, आप फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट आउट के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ये सूचना कंप्यूटर या दूसरी चीज में भरी क्यों न हो तो भी आप इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार नागरिकों को केवल प्रश्न पूछकर सूचना लेने या संबंधित दस्तावेजों या रिकॉर्ड की नकल लेने का अधिकार भी सूचना के अधिकार में शामिल है। सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू एक्ट अधिनियम 2(f) के अनुसार सूचना की बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें सरकारी विभागों के साथ साथ ऐसे प्राइवेट विभागों से सूचना को शामिल कर लिया गया है जिस पर लोक अधिकारी की पहुंच हो सकती है। सूचना का अधिकार अपने आप में एक छोटा सा कानून है जिसमें मात्र 31 धाराएं हैं व 2 अनुसूची हैं। आकार में छोटा होते हुए भी यह कानून अपने विस्तार व प्रभाव में बहुत व्यापक है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में इसे क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति से ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वह सूचना क्यों चाहता है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(2) में ये स्पष्ट कहा गया है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से सूचना के अनुरोध करने का कारण नहीं पूछा जाएगा। मांगी गई सूचना के साथ आवेदक को केवल इतनी ही जानकारी देनी होगी जो कि उस सूचना को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो, जिसमें अपना नाम, पता वगैरह ही उसे बताने होंगे। सूचना का अधिकार कानून की एक और विशेषता ये है कि सूचना मांगने पर ही सूचना देने की व्यवस्था इस कानून में की गई है। इस कानून की धारा 4 में हर लोक प्राधिकारी को इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि वो अपने अधीन रिकॉर्ड को बिल्कुल दुरुस्त व सूचीबद्ध रखेगा ताकि सुगमता से सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सके। कानून लागू होने के 20 दिन के भीतर उसे अपने महकमे की सारी जानकारी, कामकाज का दायरा, रिकॉर्ड रखने का तरीका, नीति बनाने व लागू करने का तरीका आदि सब बातें प्रकाशित करनी होगी और समय समय पर ऐसी जानकारियां भी उसे जारी करनी होगी ताकि आवेदन पत्र देकर सूचना मांगने की आवश्यकता कम से कम पड़े। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग होगा। इस कानून की धारा 5 में हर लोक प्राधिकरण में सूचना अधिकारियों को नामित करने की भी व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को नामित करने की भी व्यवस्था की गई है।

अधिनियम की धारा 6 में ये बताया गया है कि सूचना के लिए आवेदन कैसे किया जाए। यदि आपको आवेदन करना है तो इसमें जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है और सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रीति से जैसे ईमेल या इंटरनेट से वहत फीस जो कि 10 रुपए कैश या बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी या संबंधित राज्य की राजभाषा में होना चाहिए तथा प्रार्थना पत्र संबंधित महकमे के लोक सूचना अधिकारी को निवेदित किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित करना चाहिए और आवेदक को अपना नाम व पता वगैरह भी अंकित करना चाहिए ताकि अधिकारी गण उससे संपर्क कर सके। इस अधिनियम में ये व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई आवेदन पत्र किसी अधिकारी को दिया जाए और यदि वो आवेदन पत्र किसी अन्य अधिकारी से संबंधित हो तो प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि ऐसी स्थिति में अधिकारी ऐसे प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारी तक भेजेगा व इस बात की जानकारी आवेदक को भी देगा। आवेदन पत्र मिलने के 5 दिन के भीतर इस आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी तक भेज देना होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि सूचना के लिए मिले आवेदन पत्र की प्राप्ति पर लोक सूचना अधिकारी को जल्दी से जल्दी निपटारा कर देना चाहिए। हर हाल में 30 दिन के अंदर समाधान करना ही होगा। स्वतंत्रता को हमारे देश में हमारे संविधान में बहुत ही पवित्र स्थान व महत्व दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो संबंधित सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करानी ही होगी। यहाँ ये भी माना जाता है कि यदि कोई अधिकारी मांगी गई सूचना को उस समय के भीतर नहीं दे पाता है तो ये माना जाएगा कि उस अधिकारी ने आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। शासन सत्ता व निकायों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। अधिकारियों को यह भी बाध्य किया गया है कि यदि कोई अधिकारी कोई प्रार्थना पत्र निरस्त करता है तो उसे आवेदक को लिखित में ये बताना होगा कि प्रार्थना पत्र क्यों खारिज किया गया है और ये भी बताना होगा कि ऐसे खारिजा के विरुद्ध कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील किस अधिकारी के यहाँ पर की जाएगी। प्रारंभ में आपको ये बता दिया गया है कि सूचना का अधिकार कानून असीमित अधिकार नहीं देता। इस अधिनियम की धारा 8 में ये बताया गया है कि वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जिन्हें देने से मना किया जा सकता है। कोई ऐसी सूचना जिससे भारत की एकता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित तथा विदेशों से संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। ऐसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी जिससे अदालत का अपमान होता हो। वे सूचनाएं भी प्रकट नहीं की जाएंगी जिनसे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो। ऐसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी जिसके जाहिर होने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो। ऐसी सूचनाओं को भी नहीं दिया जाएगा जिनसे अपराधों की विवेचना या अपराधियों को पकड़ने में अड़चन पैदा हो सकती है। मंत्रिमंडल के कागज पत्र व मंत्रियों के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख भी लोगों को नहीं दिए जा सकते हैं। इस अधिनियम में आम आदमी को भी MLA या MP के बराबर जानकारी लेने का अधिकार दे दिया गया है कि जिस जानकारी को संसद या विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता हो तो इस जानकारी को आम आदमी को भी इस अधिनियम के तहत देने से मना नहीं किया जाएगा। यदि मांगी गई सूचना के लिए आवेदन पत्र निरस्त किया जाए या कानून के द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र का निपटारा न किया जा सके तो सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपील का अधिकार होगा। अपील संबंधित महकमे में सूचना अधिकारी से वरिष्ठ सूचना अधिकारी को की जा सकती है। यदि आप इस अपील या दूसरी अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 19 के तहत ये अपील की जा सकती है। यदि किसी जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर बिना किसी कारण के प्रार्थना पत्र लेने से इनकार किया है, समय के भीतर प्रार्थना पत्र का निपटारा नहीं किया है, गलत या

0: अपूर्ण सूचना दी है तो ऐसे में सूचना देने से नियत समय अवधि के भीतर सूचना न देने की दशा में 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जुर्माना अधिक से अधिक 25,000 रुपयों तक हो सकता है। यहाँ एक बात गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून खुफिया संगठनों व फौजी संगठनों पर लागू नहीं होता, लेकिन यदि मांगी गई सूचना का संबंध भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के हनन से हो तो ये कानून फौजी या खुफिया संगठनों पर भी लागू हो जाता है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के हाथ में सूचना का अधिकार कानून का एक बहुत ही प्रभावी हथियार है। ये एक ऐसा कानून है जिसका लागू किया जाना जनता पर निर्भर करता है और इसकी पहल भी जनता को ही करनी चाहिए। जनता जागरूक हो विषयों की जानकारी ले तो सरकारी विभागों तथा सरकार दोनों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय दिल्ली में है तथा राज्य सूचना आयोग का कार्यालय राज्य में होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कार्यालय लखनऊ में है।
1: अभी आपने सुनी ये कानूनी वार्ता। सूचना का अधिकार जाने। वार्ताकार थी सपना सारस्वत।

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें

0: और साथ ही इसी के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार

0: और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानवाधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही हम रिले करेंगे रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और दीपक गोस्वामी। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राम सागर, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा। श्रोताओ, यदि आप भी इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य फोन करके सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565-25:30-135। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता सावन और गुरु पूर्णिमा। इस विषय पर कवि श्रीनिवास से काव्य पाठ।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी बिच्छू।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग जन सम्मोहिनी में ख्याल गायन। कलाकार होंगे गणेश प्रसाद मिश्र। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर। सारंगी पर होंगे हरिबाबू कौशिक और हारमोनियम पर संगत करेंगे मदन लाल जयपुरी। समय याद रखिएगा रात्रि 10:30। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान बाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी
7: राम राम।
6: राम राम
7: बीरेंद्र, आपको भी राम राम।
8: राम राम
6: बीरेंद्र भैया।
7: हाँ जी,
6: आज हेलो किसान वाणी जो हमारा कार्यक्रम है, हाँ। या मैं क्या विषय है आज को?
7: देखो भैया, जैसे को हमारे किसान भैया जाने के मंगलवार कितना ये हेलो किसान वाणी कार्यक्रम हुए, या मैं ज्यादातर तो वैसे खेती बाड़ी के बारे में रखें, लेकिन आज को विषय हमने रखे हो पशुओं के रोग अंत संबंधित, यानी बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। तो देखो भैया, आप ये तो जानो किसान खेती करे, खेती के संग पशुपालन करे, और पशुपालन करे करवे को आपको उद्देश्य जे है कि भाई खेती के काज खाद मिल जाए और पशु ते वाय दूध मिल जाए, और जैसे के हम बकरी पालें या भेड़ पालें तो वाते ऊन ऊ मिल जाए, और बहुत से भैया हमारे जो है उन्हें बेच दें तो और लाभ ले लें। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं किसान भैया, 0565-2530-135, या फ़ोन नंबर पे आप जो है फ़ोन करके हमारे किसान भैयाओं, हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर राम सागर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं वेटनरी विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं, तो उनसे अपनों को भी प्रश्न पूछ के अपनी समस्या को समाधान कर सकें। तो भैया सबसे पहले तो अपने किसान भैया की ओर से हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो पशुओं को जो है व्याप जाएँ और किसान भैया वाते परेशान है जाए।
8: किसान भाइयों, इस समय जो बरसात का मौसम है, ये गर्मी ऋतु के बाद आता है, जिससे गर्मियों में हरा चारा बिल्कुल मात्रा में नहीं मिलता है, जिसके कारण पशुओं में कमजोरी सी आ जाती है, और उसके एकदम बरसात शुरू होने से हरा चारा प्रचुर मात्रा में मिलता है। हरा चारा कीटाणुओं, परजीवियों और विषाणुओं और जीवाणुओं को बढ़ने के लिए हवा, पानी, तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें बरसात में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे हरा चारा की बढ़ोतरी होती है, साथ में कीटाणुओं परजीवों की भी बढ़ोतरी होती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हरा चारा पशुओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह कीटाणु बढ़ोतरी होती है, उनसे हम कैसे निपटें, कैसे उनसे नियंत्रण करें और कैसे उनसे बचाव करें। ऐसी दशा में पशुपालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी खत्म होने के पहले टीकाकरण पशुओं में अवश्य करा लें। टीकाकरण पशुओं में 3-4 तरीके टीकाकरण पशुपालन विभाग या सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, जैसे गलाघोटू है, खुरपका मुंहपका है, और लंगड़िया बुखार है, ब्लैक क्वार्टर है, और इस तरह के 3-4 टीके पशुपालन विभाग से उपलब्ध है। न उपलब्ध होने के दशा में पशु पालकों को मार्केट से लेके टीका लगवा लेना चाहिए। इस समय पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क खुरपका मुंहपका टीकाकरण घर घर लगाया जा रहा है।

0: नजदीक के पशु चिकित्सालय जाकर संपर्क कर लें और टीका लगवा लें। इसी प्रकार ये ध्यान रखिए कि सरकार ने राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका उन्मूलन के तहत ये अभियान शुरू किया है, तो उसका लाभ अवश्य उठाएं।
1: भैया आज को विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम सागर जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। तो एक किसान भैया हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बिनते हैं बात करें। राम राम साहब।
2: हाँ जी
0: बोलिए बोलिए।
2: अरे जी गला का क्या उपचार है पशुओं को?
0: जी क्या बोल रहे हैं भाई साहब?
2: अरुआ से बोल रहा हूँ, पूरन सिंह।
0: हाँ बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: अरे गला घोटू पशु में ज्यादा है।
0: गला घोटू पशुओं में हो रहा है तो टीका आप जो बचे पशु हैं उनको उस पशु से अलग कर दीजिए और उनमें टीका अवश्य लगवा दीजिए। दूसरी बात, अगर गला घोटू हो रहा है तो गला घोटू के लक्षण ये तेज बुखार आना, मुंह से लार आना, नाक से लार आना और आंख से पानी आना। अगर गला घोटू बढ़ता जाएगा तब मुंह से सांस लेने लगेगा पशु, नाक से सांस लेने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे घर घर की आवाज आएगी, इसे घुरका इसीलिए बोलते हैं, और जीभ बाहर निकलने लगेगी और 24 घंटे के अंदर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इन लक्षणों के आधार पे नजदीक पशु चिकित्सालय जाकर के पशु चिकित्सक से परामर्श लें। फिर भी कुछ मैं आपको बताए दे रहा हूं दवाइयां जो स्वयं लगा लें। अगर गाभिन नहीं है तो क्यूराडेक्स नाम का इंजेक्शन लगाएं और बायोट्रिम या सल्फा ड्रग नाम की दवा 1 ml पर 50 किलो हिसाब से। हेलो 1 ml पर 50 किलो के हिसाब से बायोट्रिम भैंस में गाय में लगाएं तथा सल्फा डिमेडिन 1 ml पर 10 किलो के हिसाब से खून की नस में लगाएं और ये सुबह शाम लगाएं। साथ में बुखार उतारने की दवाएं मेलोनेक्स पावर या मेलोनेक्स प्लस या कोई बुखार की पैरासिटामोल जैसे इंजेक्शन अवश्य लगवा दें। साथ में विटामिन सी का इंजेक्शन लगवाएं जिससे जो गले में टिश्यू डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयरिंग हो सके और ये दवा 3 दिन तक करें। 3 दिन के बाद धीरे धीरे दवा को टेपरिंग कम करते जाएं क्योंकि दवा अत्यंत घातक रोग है, गले और फेफड़ों का संक्रमण होता है। तो ये ध्यान रखें कि दवा का पूरा कोर्स नजदीक के पशु चिकित्सक से मिलके अवश्य करवाएं।
1: एक और किसान भैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम राम साहब।
3: हेलो राम राम साहब।
1: हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सवालगांव से बोल रहा हूँ, सुखदेव गुर्जर।
1: हाँ जी गुर्जर साहब पूछिए प्रश्न अपना।
3: सर जी
0: बोलिए।
3: सर जी जी लगा लो एक बार भैंस है, बाद 2 महीना 2 साल की है गई है।
0: हाँ गर्मी पे नहीं आ रही है।
3: और वो गर्मी में नहीं आ रही है, हीट पे नहीं आ रही है। क्या चक्कर है? डोंक कर रही है?
0: बिल्कुल सुनिए, अगर गर्मी पे नहीं आया ध्यान रखें सुबह शाम उसको अवश्य देखते रहें, कहीं डोकती है तब नीचे पीछे से सफेद सफेद पेशाब की जगह से जुखाम से तोरा तो नहीं दे रही है, वो तोरा देना ये गर्मी का लक्षण है। दूसरा, अगर गर्मी बिल्कुल नहीं आया तो एक गोली फेंडी काइंड की 3 ग्राम की खिला दें ताकि पेट में जो कृमि है पूरे खत्म हो जाए, जो पोषक तत्व तो चूस रहे हैं आंतों से लीवर से शरीर से वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, साथ में साइक्लोमिन नाम की 10 गोली लें, 1 गोली डेली खिलाएं, साथ मिनरल मिक्सर बाजार से ले सकें ताकि एग्रीमिन या स्वयं मिनरल मिक्सर बना लें, खड़िया नमक और तूतिया का मिश्रण 50-50 ग्राम सुबह शाम दें, गर्मी पे अवश्य आएगी। अगर गर्मी पे आने पे कोई कमी रह जाए तो नजदीक के पशु चिकित्सक से परामर्श लें। अगर गर्मी पे आती है और रुकती नहीं है तो उसमें गायना रिच नाम का एक इंजेक्शन 3 ml आता है, उसको 3 ml लगवाने के उपरांत फिर उसको बीज डलवाएं और बीज डलवाएं ध्यान रखें कि 2 बार बीज डलवाएं सुबह और शाम ताकि अंडा फूटने के यदि देरी हो रही हो तो बीज समय से अंडा फूटने में फर्टिलाइजेशन या निषेचन या मिलान हो सके जिससे भैंस या गाय ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग किसान भाइयों को ये बता रहे थे कि टीकाकरण गला घोटू कट करवाएं, खुरपका मुंहपका का करवाएं और बकरी और भेड़ में फिड़किया का टीका लगाएं।
1: और या मैं डॉक्टर साहब जो भ्रांति है मन में कि टीकाकरण के बाद हमारे पशु दूध कम कर दे या बीमार पड़ जाए।
0: देखिए तो एक बचपन में हम लोग खुद टीका लगवाते तो दो एक दिन बुखार आता था,
1: इतनी सी
0: तो वो बुखार आए में एक दो दूध कम होगा, दूध बढ़ाने की दवाई बता दे रहा हूँ आपको, दूध वो खिलाते रहें, दूध सामान्य फिर आ जाएगा। अगर दो दिन के बुखार में 2 किलो दूध के कम होने पे आप लंबा पशु का नुकसान कर लें वो बेहतर नहीं होगा। छोटा नुकसान ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त किया

0: बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने में गरीब किसान पशुपालक को कष्ट होगा। तो ये ध्यान रखें कि पशुपालक 5 किलो खड़िया, 5 किलो नमक और 10 ग्राम तूतिया मिला के सबको पीस लें और आधा किलो सतावर कूट के, खल्लर कूटना से कूट के मिला लें, एक मुट्ठी सुबह शाम दें, दूध की मात्रा उससे ज्यादा ही होगी जो उसकी क्षमता है।
1: तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई हमारे संग जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ जी, राम राम साहब।
2: राम विपिन कुमार बोल रहे हैं, सोनी से।
0: हाँ बोलिए विपिन कुमार जी।
2: हम जी पूछना चाह रहे हैं, जैसे पहली बार गर्भधारण करवाए तो कब करवाए पशु का?
0: अगर पशु गर्मी पे आता है तो गर्मी में गाय आती तो गाय को गर्मी के आने के 12 घंटे बाद करवाएं, भैंस को गर्मी में आने के जब हीट खत्म होने लगे तब 2 बार सांत करवाएं, क्योंकि भैंस में अंडा गर्मी के आने के 24 घंटे बाद फूटता है, ये ध्यान रखें। अगर सांड, ये ध्यान रखें, सांड सुबह सुबह गर्मी पे आई भैंस और 4 भैंस उसके पास पहुंच गई तो वीर्य बचेगा नहीं, वो केवल माउंटिंग करता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा, वीर्य की मात्रा कम निकलेगी। तो ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह जाएं किसी भैंसों में वो वीर्य मिलान न हुआ हो, जिससे वीर्य की मात्रा पशु गाय भैंस में आपको उचित मात्रा में मिल सके। दूसरा, अगर ये न हो सके नजदीक के पशु चिकित्सालय जाकर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बीज डलवाएं और ऐसे आदमी डॉक्टर डलवाएं जो ठीक से टेक्निकल होशियार तकनीकी रूप से जानकारी रखता हो, और गर्मी के आने के 24 घंटे बाद भैंस में और 12 घंटे बाद गाय में 10-12 घंटे के अंतर में 2 बार अवश्य डलवाएं, जिससे भैंस रुकने की, गाय भैंस रुकने की पूरी चांसेस रहेंगे।
1: तो ये तो, हेलो हेलो,
0: हाँ
3: तो ये राम राम साहब।
1: हाँ जी राम राम साहब, बताओ कहाँ से बोल रहे हैं?
3: आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे हैं।
0: बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ भाई साहब।
3: जी जी डॉक्टर साहब, राम राम।
0: राम राम राम, बोलिए।
3: मैं चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम सियोरा से बोल रहा हूँ सर।
0: बस समझ गया, बोलिए भाई साहब, पहली बात आपसे होती रहती है। बोलिए।
3: अभी अभी आप कह रहे हैं कि ये जो टीका है, टीकाकरण जो होता है सरकार द्वारा निशुल्क,
0: हाँ निशुल्क, गला ये फुरकापा मुंहपका का टीकाकरण इस समय निशुल्क हो रहा है, राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका उल्मान के उल्मुना अभियान कहता है, निशुल्क हो रहा है
3: जी सर।
0: हाँ,
3: वो टीम जो गांव में आया करती थी, मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि अब वो नहीं आती है, ये प्राइवेट मार्केट में भी उपलब्ध है। चलो हम किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि कीमती पशु की जान न चली जाए, उसका इंतजाम पहले से ही करके चलते हैं।
0: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, आप एक बार पशु चिकित्सालय राया या सदर पशु चिकित्सालय आ जाएं, अगर न हो तो मेरी बात करा दें, मैं आपको ये टीका उपलब्ध है अवश्य मिलेगा। इस समय चल रहा है राष्ट्रीय, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, सब जगह राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका उन्मूलन अभियान चल रहा है, मुफ्त टीका लग रहा है, ये सत्य है, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के या फालतू बोलना मेरा उचित नहीं है, है ना?
3: जी जी जी डॉक्टर साहब, आज आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा विषय रखा है। और सागर साहब, मैं आपसे भली भांति बाकी हूँ, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा।
0: हाँ बोलिए।
3: हमारे पशुपालक भाइयों को विस्तार से ये बताएं कि जैसे ये बीमारी घातक तो है ही, हाँ, और इससे जो दूसरे पशुओं में संक्रमण फैलता, हाँ, है,
0: ये दोनों बीमारियां छुआछूत की, गलाघोटू और खुरपका मुंहपका। अगर किसी गाय को, भैंस को गला घोटू हुआ है या खुरपका मुंहपका हुआ है तो उसकी नांद अलग रखें, चारा उसका पानी बिल्कुल अलग कर दें, जिससे कि वह छुआछूत एक जीवाणु से द्वारा होने वाली बीमारी है, एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक वायरस से होने वाली बीमारी, दोनों बीमारियां संक्रमण या छुआछूत की हैं, तो इनको अलग बांधें, इनका चारा पानी बीमार जानवर का अलग कर दें, जिससे कि दूसरी जानवरों में बीमारी न फैलने पाए।
1: एक और किसान भैया हमारे संग जुड़ रहे हैं। राम राम साहब। हेलो। हाँ तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे गए तो या मैं जैसे साफ सफाई की विशेष बात है,
0: साफ सफाई विशेष व्यवस्था, अगर बीमार जानवर है तो उसके आसपास चूना पाउडर छिड़कवा दें, उसका जानवर को बीमार होने तक अलग चारा पानी बिल्कुल दें, उसकी नांद अलग रखें ताकि लार दूसरे जानवर चाट के और कीटाणु और विषाणु दूसरे जानवरों के मुंह में न जाए, और जो पशुपालक की देख रेख करता है वो हाथ धो के साफ करके या गुनगुने पानी से या डिटॉल सेवलान से हाथ धो करके ही दूसरा दूध निकाले गाय का, मतलब बीमार गाय का दूध निकाला फिर स्वस्थ गाय में आ गया, या स्वस्थ गाय का दूध सबका पहले निकाल लें, बीमार गाय का बाद में दूध निकाल लें, उसके बर्तन, उसका चारा पानी, उसकी बाल्टी, उसकी दांत, नोहरा अलग रखें।
1: तो या मैं डॉक्टर साहब जैसे बात है रही है, जब मैं लवारिन के स्वास्थ्य की

0: बात की आवश्यक है, क्योंकि बड़े पशुओं के संग में हमारे जो लवारे उनकी कैसे देखभाल।
1: लवारों को जैसे ब्याने के ब्याते हैं, ब्याने के गांव में पशुपालक ज्यादातर ये कहते हैं कि साहब जब देर डाल देंगे तब दूध निकाल देंगे, ये गलत भ्रांति है। जितनी जल्दी उसका कीला प्राथमिक कीला पहले कीला बच्चे को पिलाएंगे तो वो पहली बात तो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप विकसित करता है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। वो जो पहला कीला है वो प्रतिरोधक क्षमता से बहुत प्रोटीन से रिच होता है, बहुत बात प्रचुर मात्रा मिलता है। ये जैसे अपने माओं को दूध अधिक माएँ आदमियों माँ दूध नहीं पिलाती बच्चों, तो वो बच्चे कमजोर होते हैं। तो इसलिए ये भ्रांति है कि जितने देर में जब जे डाल देंगे तभी कीला निकालेंगे।
0: हेलो,
1: ये कीला बच्चों को पिलाना चाहिए।
0: हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
2: हम बोल रहे हैं।

0: हेलो।
1: राम राम।
0: हाँ जी, राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
1: हम बोल रहे हैं अर्जेंट से आपके पास से। अरे
0: जी प्रश्न पूछो भैया अपना।
1: भाई बढ़िया हम चौलों की आदि 30 साल तुम का के दबा को फिर हाथ से लेकर।
2: क्या कह रहे हैं भाई साहब, साफ बोलिए, रेडियो थोड़ा दूर रखिए।
1: हेलो।
2: हाँ बोलिए।
1: अरे भाई पढ़िया पिछली साल भी आनी तो का नाम है बाबू हाथ से फिर ले करवायो।
2: हाँ अब वो अब गर्मी पे नहीं आ रही, आ रही तो रुक नहीं रही है।
1: हाँ तो वो आश्रे की नहीं रह रही।
2: हाँ अगर आपने जब हाँ से जे निकलवाया था तो 3-4 दिन उसमें हाँ से निकलवाने से जे रुका हुआ था, ऐसी दशा में 3-4 दिन तक एंटीबायोटिक उसमें डलवाना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन, लिक्सिन, जो उचित नजदीक मार्केट में पशु चिकित्सक के परामर्श से मिल सके, ताकि जो उसमें लो ग्रेड मेटाइटिस है या उसकी जो बच्चादानी की दीवार खराब ना हो पाए इन्फेक्शन की वजह से। कोई बात नहीं, चलो जो हो गया तो हो गया। अब आप ध्यान रखें कि साइक्लोमिन नाम की गोली 10 गोली लें, एक गोली डेली खिलाएं, साथ में एग्रीमिन फोर्ट या कोई मिनरल मिक्स अच्छी कंपनी का 100 ग्राम रोज दें, गर्मी पे अवश्य आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो फिर अंडाशय नजदीक के पशु चिकित्सालय में जरूर चेक करा लें कि अंडाशय उसके एक्टिव हैं या कार्य कर रहे हैं या उनमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और चेक करा लें। और पशुपालक
1: गर्मी पे तो आई है, दो तीन दिन
2: तो जब
1: आई है,
2: गर्मी
1: तो आई
2: पे
1: है पर।
2: जब गर्मी पे आए तो गाइना रिच नाम का एक इंजेक्शन आता है, गाइना रिच 3 ml का आता है, उसको लगवा दें, तब बीज 10 घंटे या 12 घंटे के अंतर में 2 बार डलवाएं, चाहे 2 बार फ्रांड से मिलवाएं या चाहे 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, अवश्य भैंस रुकेगी, कभी कभी अंडा फूटने में देरी होती है।
0: हाँ राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
2: राम राम। राम राम भाई साहब,
0: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
1: सर जी मैं गांव औरिंग से मथुरा
2: बोलिए।
1: से बोल रहा हूँ।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
1: सर जी हमारी एक भैंस कर घास मैडम पर घास दवाई छिड़क देगा बस घास खाई गई तो बस खून खून खा लो पड़ा होगा कुछ।
2: क्या क्या क्या क्या क्या खा गए भाई साहब?
1: ये घास वो भैंस ही जो मैडम पर धान फानने की दवाई छिड़क देना घास।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ वो देखिए खा गई है तो कोशिश करो कि बहुत समय ना खाने पाए, साथ में मैक सल्फ, मैक सल्फ 200-200 ग्राम रोज 3-4 दिन खिलाएं और कोरियल पिलवाएं, तो जो अंदर घास पेट के खा गई है तो उसका जहर आंतों में न सोखने पाए उसके लिए कोरियल 1 लीटर पिलवा दें। पिलवाते समय ध्यान रखेंगे जीभ न पकड़ें, जीभ पकड़ने से कभी कभी नकार चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक। और मैक सल्फ पैकेट का आता है, मैक सल्फ सिंपल से दुकान में मिल जाएगा, इससे थोड़ा दस्त की मात्रा बढ़ेगी तो जल्दी जहर बाहर निकल जाएगा। यदि और कुछ समस्या हो रही हो तो ग्लूकोज की बोतल, DNS की, ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाएं ताकि शरीर में जो जहर घुल गया है दवा का, वो दवा का असर कम हो जाए और पेशाब की जगह से धुल के निकल जाए, ठीक। तीसरा काम यह है, यदि लक्षण बुरे आ रहे हैं, भूख कम हो रही है तो भूख की दवाइयां बी कॉम्प्लेक्स मांस में लगवाएं, साथ साथ कुछ लीवर टॉनिक, लीव 52, बेटकाइंड लीव, जो दवा लीवर मजबूत करने वाली हो, कि कोई भी दवा पेट में जाती है तो जो जहर रूप में होती है या ताकत के रूप में, सबको लीवर ही उनको मेटाबोलाइज करता है, लोअर लीवर ही पचाता है ताकि लीवर की मजबूती बनी रहे, इसलिए लीवर की मजबूत करने की दवाइयाँ लीव 52 पेरेंट्रल एज बिल मांस में और साथ साथ मुंह से खिलवाएं। तो ये पशुपालकों को ये प्राय
0: हेलो
2: रहता है।
0: हेलो हेलो।
2: हाँ बोलिए भाई साहब।
0: हाँ किसान भैया, अगर हमारी आवाज सुनने हैं तो बात करें, फोन कट गया।
2: तो पशुपालक ये कहते हैं कि साहब वो जेर जब डाल देंगे तब वो दूध निकालेंगे, उससे ये दिक्कत है कि जितनी देर दूध रुका रहेगा, अब वो 6 महीने पहले की कीला बना हुआ, ब्याने के दिन वो पूरा लैक्टेशन हो रहा है, उस दिन थन तर्रा रहे हैं और पशुपालक इंतजार कर रहा है कि जेर डाल दे, जेर डालने देने से फिजियोलॉजिकल ट्रोमा होगा और बच्चादानी का मुंह खुल चुका है,
0: जो हमारे गामन में जो भ्रांति है
2: तो वो गलत है,
0: वो गलत है,
2: गलत है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी दूध निकाल के बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चों को बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वो दूध बच्चे के लिए पेट साफ करने, मिकोनियम साफ करने काम आएगा, पटेरे वटेरे नहीं पड़ेंगे, दूसरा वो दूध निकलने से थनों को आराम मिलेगा, तीसरा दूध निकलने से थन पकड़ने सेंसेशन होगा और बच्चादानी सिकुड़ेगी और जल्दी जेर डाल देगी।
0: एक किसान भैया हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो।
1: नमस्कार सर जी।
0: हाँ जी राम राम साहब, कौन से काम से बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं नरेश बोल रहा हूँ, सकराय बाबूगढ़ से।
0: हाँ जी बोलिए नरेश जी।
1: अब हम पे 2-3 बकरियाँ हैं।
0: हाँ
1: अब बकरा साहब हम पे है ना है।
0: हाँ।

0: हाँ
1: अभी हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये गर्मी आ रही है
0: देखो,
1: कि
0: बकरियों के गर्म होने का सीजन मार्च से जून तक होता है। आप बकरों बकरा भी रहेगा तो बकरे में शुक्राणु बढ़ने की क्षमता जुलाई के बाद कम हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल ना के बराबर रहती है। शुक्राणु भी उत्पादन कम हो जाता है, तो जब उत्पादन कम होता है नेचुरल प्राकृतिक कमियां हैं जो गर्मी पे आएगी भी, एक तो आएगी नहीं, आएगी तो वो माउंट नहीं करेगा, उसमें चढ़ेगा नहीं या उसको मिलान नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि बकरियां जैसे ही चारा कटने लगता है, गर्मी शुरू होती है होली के बाद, होली के बाद जून तक भयंकर रूप से गर्मी पे आती हैं, वहीं अपने आप मिमियाएगी, चिल्लाएगी, पूंछ हिलाएगी, पीछे से तोरा देगी, पेशाब की जगह से, ये सब लक्षण आएंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने भी लगती हैं। तो ऐसी दशा में ध्यान रखें, मार्च के बाद जून तक बकरी गर्मी पे आती है, और अगर हो सके किसी के बकरा हो तो उसके पास कभी कभी मिलवाने चले जाइएगा, या बकरा वाले से झुंड में रेवड़ में छोड़ दे चरने के लिए गर्मियों में, उसी मई जून में अप्रैल में, अपने आप गर्मी पे होगी और ठहर जाएगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत आए, लक्षण दे इन लक्षणों के आधार पे, तो वेटनरी विश्वविद्यालय चले आए, वहां से कृत्रिम गर्भाधान की होता है, कृत्रिम गर्भाधान सीमेन ले करवा दें, और न लक्षण न पहचान पाए तो पूंछ हिलाती है, थन दूध कम देने लगती है, पेशाब रुक रुक के करती है, पेशाब में हल्का सा जुखाम जैसा पानी डालती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, ये लक्षण देगी बकरी।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे ये तो बात भाई बकरी की, अब बहुत से हमारी भैंस भी ऐसी हो हैं,
0: बहुत भैंस ऐसी हैं जो लक्षण नहीं
2: कोई
0: देती
2: भी
0: है
2: लक्षण दिखाई ना दे
0: और गर्मी पे आ रही है कि नहीं आ रहे कर पशुपालक जान नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, समस्या एक भी आती है, हम लोगों के यहाँ गांव में ज्यादातर माताएं बहनें पशुओं की देख रेख करती हैं, तो वो भैंस जिस दिन गर्मी पे आती है तो शर्म के मारे बड़े बुजुर्गों को बताती नहीं है कि यार वो थोड़ी शर्म तो गांव में समाज में है ये भी कि ये गर्मी पे है कि नहीं है। तो ये पशुपालक भाइयों को पुरुषों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह शाम पशुओं पे हाथ फेरें और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखें। यदि गर्मी पे आई होगी तो बाँ बाँ चिल्लाएगी गाय भैंस, या पेशाब में तोड़ा डालेगी, या जिस जहां बंधी होगी यहां खूंटे में चलखुर बढ़ जाएगी उसकी, दूसरा अगर पीछे हाथ फेरेंगे पूंछ के आसपास तो पूंछ उठा लेगी। तो ये लक्षण देखना पड़ेगा। कुछ जानवर बां बां बोलने का, उसको बोलते हैं साइलेंट हीट, मकुनहे होते हैं, बोलते ही नहीं है, अंदर से हीट पे रहती हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा उनके पास जाके, उनके मैनेजमेंट में, व्यवहार में, गतिविधियों में। और जब गर्मी पे आए तो नजदीक के पशु चिकित्सालय सांड से मिलवाएं या पशु चिकित्सक से कृत्रिम गर्भाधान अवश्य कराएं।
2: एक किसान भाई हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, राम राम साहब। हाँ जी, कौन से गांव से बोल रहे
3: हैं? राजस्थान से बोल रहे हैं।
2: हाँ जी बताओ साहब, क्या प्रश्न तैयार हो?
3: हमारी एक गाय है, वो मतलब सुबह दूध बढ़िया दियो, अब दवा है।
0: देखो गाय है तो उसको थन में दूध हाथ में लगा कर देखो, थन गर्म तो नहीं है, कहीं थन अलग शुरुआत हो रही हो, क्योंकि थन दूध सुबह दिया है, शाम को एकदम नहीं दिया है, तो दूध की ऐसी कोई कमी होने वाली नहीं 6 घंटे 12 घंटे में।
3: दूध तो दियो पर वो दूध में छेंचरा,
0: हाँ थनेला की शुरुआत है इसमें। तो एक काम और करें आप, फिटकरी कूट लें, फिटकरी कूट के पानी में घोल दें, आधा किलो फिटकरी 2 लीटर पानी में घोल दें और बर्फ फ्रिज में जमा दें, जब ठंडा चिल्ड कपोज आए मतलब जमने लगे तो उसको भिगो कर रुई थनों में, पूरे में, आयन में, टीट में, थनों में फेरे सुबह शाम, दिन में 3-4 बार, हर 2-2 घंटे फेरे तो और अच्छा है। दूसरा, उसके अंदर एक आती है ट्यूब, मैमिटाल या मैमीसेफ, दूध निचोड़ने के बाद ये ट्यूब चारों थनों में एक ट्यूब चढ़ा दें, और एक इंजेक्शन आता है, सिंपल सा इंजेक्शन आता है, इनरोसिन, इनरोसिन 20 ml सुबह शाम 3 दिन लगा दें, ठीक। एक तो फिटकरी की सिकाई करें ठंडे पानी की, गर्म पानी के छींटे न मारें, ये भ्रांति है, गांव में कहते हैं लोग चकचूदर सूंघ गई है, चकचूदर इतना सुकुवार जनन अंग है वहां नहीं छू सकती। अगर ब्याने के लक्षण न हो, दूध देने की आदत न हो, तो भैंस थनों में हाथ लगाने नहीं देती, गाय लात मार देगी तुरंत, तो एक भ्रांति आप दूर कर ले कि चकचूदर कोई चीज होती है। तो ये ध्यान रखें, तुरंत फिटकरी ठंडे पानी से धुलाई सिकाई धुलाई करें उनके थनों की, और इनरोसिन नाम की दवाई 20 ml सुबह लगाएं, मैमिटाल ट्यूब चारों थनों में आज चढ़ा दें कल चढ़ा दें, और सूजन हो तो मेलोनेक्स 20 ml 2 दिन लगा दें, 20-20 ml मांस में, इतने में ठीक हो जाएगी।
2: हाँ, एक किसान भैया हम तो जुड़ना चाह रहे हैं, राम राम सर।
4: सुबह
2: राम राम सर।
5: हेलो।
2: हाँ जी राम राम सर।
5: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बोलिए भाई साहब,
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी, मैं जरित्रा से बोल रहा हूँ, सतवीर बोल रहा हूँ।
0: हाँ सतवीर बोलिए, क्या समस्या है?
5: हाँ सर, मेरी एक पढ़िया है जो पहलवान है, जो मैंने आखिर की करवाई, तो अब उसमें बच्चेदानी में उसका इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने दवा उसमें डलवाई, तो कम से कम

0: एक लीटर उसने सफेद पीला पदार्थ का उसमें से निकल पाया।
1: क्या बच्चा फेंक दिया उसने क्या? तो उसके अंदर इलुआ बन गया, मेट्राइटिस बन गई है। उसमें 3-4 दिन लगातार बीटाडीन नाम की दवाई या सिप्रोवेट नाम की दवाई या सिप्लाक्टिजन नाम की दवाई 3-4 दिन 60-60 ml नली द्वारा डलवाएं, और उसको जब सुबह नलवाएं और शाम को सफाई कराएं पूरी। डालने से पहले सफाई करें और डालने के बाद छोड़ दें, फिर 12 घंटे बाद सफाई करें। 3-4 दिन लगातार सफाई कराएं बच्चेदानी की, नहीं वो बच्चेदानी की दीवार खराब हो जाएगी, अगली बार वो गाभिन होने में समस्या करेगी। और साथ साथ में उचित एंटीबायोटिक डॉक्टर के परामर्श से सुबह शाम 2 दिन लगवाएं।
2: रावण साहब, हेलो।
1: हाँ बोलिए भाई साहब। राम राम। बोलिए भाई साहब।
3: हमारी एक गाय है।
1: हाँ।
3: 2 बच्चे हो गए।
1: हाँ।
3: दूध कम दे रही है जी।
1: तो एक काम करो, दूध कम दे रही है तो सतावर आधा किलो, नमक 5 किलो, खड़िया 5 किलो, सतावर को जड़ें साई पाती कूट के खलरा कुटरम कूट लो और तब तीनों को मिला लो। 10 ग्राम तूतिया पीस के उसे मिला दो। ज्यादा मात्रा में तूतिया जहर है, थोड़ी मात्रा में तूतिया दवा है। सबको मिला के पीस ले, एक मुट्ठी सुबह शाम दे, दूध बढ़ेगा। अगर इससे भी ना बन पाए तो टैबलेट लेप्टाडीन नाम की गोलियां आती हैं बाजार में, छोटी छोटी गोलियां होंगी, 10 गोली सुबह शाम खिलाएं और कोई बाजार से कैल्शियम ला के 5 लीटर का ट्री 100 ग्राम सुबह शाम पिलवाएं। और ये ध्यान रखें, थनों की धुलाई सिकाई ठंडे पानी फिटकरी से करें, गर्म पानी की धुलाई सिकाई न करें।
2: या मैं ये भी बात बहुत आवश्यक है डॉक्टर साहब कि जो वैज्ञानिक सोच के संग काम करें।
1: हाँ
2: सुनी भाई बात, आदमी
1: पुरानी परंपराओं में किसी ने भ्रांति फैला दी उससे कार्य न करें, अन्यथा पशुपालक का अगर एक थन मारा गया तो चौथाई गाय भैंस चली गई। एक पथन मारा गया चौथाई गाय बहन चली गई। तो इस स्थिति का ध्यान रखें कि वैज्ञानिक सो पशु चिकित्सकों की सलाह से या तकनीकी आदमी की सलाह से ही दूध निकालना, बीमार इलाज करना या गाभिन जांच कराना ही करें, अन्यथा पशुपालक का इससे नुकसान होगा।
4: दीपक भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे किसान भैया ने खूब ही प्रश्न पूछे और देखो अब वो फोन आ रहे हैं लगातार, उनकी जिज्ञासा बहुत हुए पर समय की बात देता है। अब यह समय जो है हमें अपनों कार्यक्रम विराम देना पड़ेगा, पर चलते चलते हम डॉक्टर साहब से बस खाली एक बात पूछेंगे कि डॉक्टर साहब यह मौसम में ऐसी कौन सी हमारे किसान भैया ने एक लाइन में बात बताई भी की है जाते वो अपने पशु ने बरसात में सुरक्षित रखें।
1: पशुओं को टीकाकरण, गला घोटू खुरपा का मुंह दोनों लगवाएं, साथ में कीड़े की दवाई खिलवाएं तथा साथ में बच्चों को जो पैदा हो उनको 15 दिन के अंदर कीड़े की दवा डॉक्टर की परामर्श दे दें ताकि बच्चों की मृत्यु दर न हो और बच्चा मरने के बाद दूध की कमी न हो, पशु देने में दूध आनाकानी न करे। साथ में पोषक तत्व तो समय से खिलाते रहे, मिनरल मिक्सचर, दूध बढ़ाने की दवाइयां। यदि कोई समस्या है तो आप फिर नजदीक के पशु चिकित्सक से परामर्श और ले लें।
2: डॉक्टर साहब आज आपने हमारे पशु चिकित्सक के तौर पे बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे किसान भैया को, और ये एक बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है क्योंकि आपने ऐसी ऐसी बात बताई जो उनके वास्तव में काम की है।
4: तो भैया कार्यक्रम को यही संपन्न करिए कि अपने किसान भैया आज्ञा ले लें, सभी किसान भैया बहन को
1: राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे जसपाल सिंह और साथी फिल्म थी गीत गाथा चल। और आइए सुनते हैं अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना, फिल्म है चिंतामणि सूरदास।

ये थे अनूप जलोटा और साथी फिल्म थी चिंतामणि सूरदास। और आइए सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा में सावन और गुरु पूर्णिमा पे काव्य पाठ कवि हैं श्रीनिवास।
1: सावन सुहावनो लगे झूला झूलने से डर के डोले गीत गा रही मलार है। कंठ जा को कोकेला सो बोलत मधुर वन ग्वालिनी पे जोवन किया रही वहार है। कि बादलों की गर्जना से मोर भी तो नाचते हैं पिया पिया पपिया भी करता पुकार है। और भूमि तो सुहानी लगे हरी चुनरी कुओड़

नाग पंचमी पूज गीत देवन के गामे, फौजदार कवि कहे सनूनो है मन भावन, और है जाए खुशी किसान बरस जाए सबरो सावन। निज देवन को बिसराए रहे और ध्यान धरे नित शंकर जी को, कोई गोवर्धन की दे परिक्रमा दीपक जोर धरे माघी को, कोई नंद के लाला की याद करे, कोई जाप करे ब्रसभान लली को। फौजदार यूं विचार कहें बिन मात लगे संसार उफी को, कि माँ के उपकार न कुम याद करो बार बार, कैसा वो स्नेह लेखनी बिहार जाती है। कि माँ के उपकार न कुम याद करो बार बार, कैसा वो स्नेह लेखनी बिहार जाती है। कि हमको रिझाने लगी लोरियां सुनाने लगी, बाहों का झूला बनाए हमको झुलाती है। कि बार बार बिस्तर को गीला कर देते जब, आप कष्ट सही हमें।

जन्म दे दुख सब हर ले करके दुलार बार बार पुचकारती और उंगली थमाए संग अपने चलाए रही गिरे जब लाल धूल पल्लू सोई झारती के कष्ट आप सही ले लाल कून रोन दे पीठ पे बिठार फिर आंगन बुहारती और फौजदार।

ना खटाई, मैं तो बांट देऊं गुड़ चना। संतोषी माता ने कमहर कर जाएगी, और नौ दिना उपासी रहूं, दुर्गा को मनाऊं खूब। आय के करौली वारी दुख भर जाएगी, कि बैसणों की जात जाए काश्मीर कर आऊं। वाई के सहारे बात पार पर जाएगी, और सहुना उलाने मैं तो सबको दिखाऊं सिंह। राम की कृपा ते मेरी गोद भर जाएगी, के कार्तिक बदी की चौथ खूब करूं उपवास। सांध को अर्घ दे के खानो जब खाऊंगी, और मांग रही बर मेरी चूड़िया अमर होए। फागुन में चौदह से पे भोला को नवाऊंगी, कि पति तो बजावे टहल करते फिरेंगे सहल। जेठ के दशहरा पे हरिद्वार जाऊंगी, और साधु न को ढोक दे के पाई लेंगे बरदान। लालाए मुड़ाए में तो गंगा जी में नहाऊंगी, कि लालाए मुड़ाए में तो गंगा जी में नहाऊंगी। बेटे के लिए माँ कितनी व्यवस्था करती है, लेकिन उसके बाद माँ को क्या मिलता है, कि बेटा की सगाई होए बाप को खुशी अपार। माता जी सहेली संग खूब गीत गाती है, और जावेगी बरात जब नाच होए सब रात। धर के बता सो फिर आंचर पिवाती है, कि आखिरी पिवावे छीर बेटा मेरा होए वीर। मिलके करेंगे सेवा।

कि आयो है जमानो नयो, कैसो ये अचम्मो भयो, सास को दिखावे गूठा आज बहु नई है, और बाप से करे विवाद, घर की यो बर्बाद, बेटा कहे तेरी तो कमाई कहाँ गई है, कि बोलत कठोर बेन ने क नहीं पायो चैन, तेरे संग हमने तो मुसीबत सही है, और ब्याह जो हमारो भयो तब ते गुजारो भयो, जीवन में आराम की सांस अब लई है, कि जीवन में आराम की सांस अब लई है। अब इस समय हमारे ब्रजधाम में परिक्रमा चल रही है, एक परिक्रमा के बारे में लोकगीत, कि परिक्रमा दें गोवर्धन की गई मुड़िया पुण्यो।

वरदन की जो गिर गिर कर संभल जाते उसे गिरना नहीं कहते, जो गिर गिर कर संभल जाते उसे गिरना नहीं कहते, गया जीवन शहादत में उसे मरना नहीं कहते, चिरागों को नहीं सींचा जिन्हें तम ही सुहाता है, चढ़े पाषाण की किश्ती उसे मरना नहीं कहते, चढ़े पाषाण की किश्ती उसे तरना नहीं कहते, बिरानों को समझ अपने जो अपनों को भुला देते, छोड़कर बंधु का साया जो गैरों की शरण लेते, करे इजहार खुशियों का पराए गीत गा गा कर, कभी आवाज ना होंगे दूर परिवार से रहकर, करे अपराध छुप छुप कर वह खुलकर रो नहीं सकता, करे अपराध छुप छुप कर वो खुलकर रो नहीं सकता, फसल काटी बुराई की भलाई बो नहीं सकता, कृतघ्नता बसी मन में वही होशियार होते हैं, जो भाई का विरोधी है किसी का हो नहीं सकता।

0: ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत अभी आपने सावन और गुरु पूर्णिमा पे स्वरचित काव्य पाठ सुनो। कवि है श्रीनिवास और अब यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम।
0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्यरात्रि से लागू होगा डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान

0: शामिल हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके।
1: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स, अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा है। और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित और सुगम न्याय के प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने के साथ ही 500 करोड़ रूपये के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की है।
3: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे, हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,183 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची के अनुसार तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मोथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और आपात सेवा बनाया गया है। अमरेंद्र कुमार सेंगर को पुलिस आयुक्त लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर

0: जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी सेवाओं से वाराणसी जोन और पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन आज मध्य रात्रि से लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
1: मेरठ लगभग 222 किलोमीटर से अधिक कांवर मार्ग है, जिसमें की 8 प्रमुख मार्ग है और सभी मार्गों का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। नगर निगम के द्वारा भी बिजली के खम्भों का इंसुलेशन का काम किया जाता है। ये सारे काम प्रगति पे हैं। इसके अलावा कांवर पटरी मार्ग जो राइट से अलावा अपर गंगा केनाल बोलते हैं, उनकी भी मेजर रिपेयरिंग हो चुकी है। जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग पूरे मार्ग में पथ प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से हो, इसलिए विगत वर्ष में यदि कोई कमी रह गई उसको भी ठीक दुरुस्त कराते हुए वो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका और आय का अवसर प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को भी गति मिलेगी। अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया है। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मुहेरेकर। जाफराबाद मराठावाड़ा से

सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित भयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वर्द देशमुख, प्रणाली सानवी, हर्षिता देशमुख और उनके परिवारीजन, ग्राम

ग्राम कोस्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन। तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायगवाड़, आविष्कार गायगवाड़, अनामिका और प्रणिता गायगवाड़। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेश, सुषमा परिधि मायरा और उनके परिवारीजन। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। वीरगांव से अजीत भावसार, प्रमला, भावेश, सन्नी भावसार और राकेश भावसार। आप हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउलक डाबर। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। गडकेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश लोखंडे और उनके परिवार के सभी सदस्य। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर और उनके परिवारीजन। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता और इनके माता पिता। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और उनके परिवारीजन। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और इनके माता पिता। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके माता पिता। गणेशपुर गंज डोंडवारा इट्टा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सामा फारूक, सरफरा शेख, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रेहनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखे देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और उनके मित्रगण और परिवारीजन। शास्त्री नगर बीट शेड से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल और उनके मित्रगण। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज में निर्देशक लक्ष्मीकांत पेरेलाल।

किशोर कुमार की आवाज़ में अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब जो हमें संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभांडे, भारतीय रंभांडे, जाह्नवी, वैष्णवी और हर्षल। राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह रानी, मेनका।

श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल रानी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता गोदावरी प्रदीप कुमार नायक राज बहादुर शाह शंभू शाह और जय मंत्री गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जोहरी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल और कुणाल मेहरा रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार और नजमा बेगम नास सरिता गौतम और उनके परिवारीजन शेरगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले तेजस एस काले और लोकेश एस काले भिवंडी जिला ठाणे से महादेव परदेसी चांद नुमान झाकिया और अदनान ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल शोभा मीरा रानी पाटिल प्रियंका अजय पाटिल बेबी आर्य पाटिल प्रणीता विजय पाटिल समर्थ माउली पाटिल और उनके परिवारीजन बेरडी से राकेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी वैष्णवी ढोमने और चंचल आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा सायना शर्मा और निवान शर्मा जनमंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी आइए सुनते हैं आप सबके लिए समीर की शब्द रचना संगीत निर्देशक नदीम श्रवण गायक स्वर अलका याग्निक के फिल्म का नाम राज़

0: ये थी अलका याग्निक, फिल्म थी राहस। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं प्रकाश नगर मथुरा से कन्हैया लाल वर्मा और खड़क सिंह छोंकर, साधुशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, लाल माता सुदामा नगर रडलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुनिदी भाई बागरी, आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू और पप्पी भाटिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, मजनूगढ़ टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आइए सुनते हैं आप सबके लिए प्रेम कहानी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गीतानंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा।

ये थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर, फिल्म थी वारिस। हमें जो पसंद मिली उनके नाम है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। वाणीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवारीजन। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर। कंवर कॉलोनी भड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लुहार, भोपालगढ़, माया शवांश, चंद्रकला देवी दास और उनके परिवारीजन। और श्रोता उसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली

दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के
रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया।

0: हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म का नाम है बिच्छू। पहले सुनिए इस फिल्म में हैरी आनंद और सुनिधि चौहान को।

ये थे हैरी आनंद, सोनिधि चौहान और साथी। और आइए भी सुनते हैं इसी फिल्म में श्वेता शेट्टी, हंस राज हंस और साथियों को

ये थे हरी आनंद और जसपिंदर निरूला। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी बिच्छू। इस फिल्म के गीतकार थे समीर, संगीत निर्देशक थे आनंद राज आनंद। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है।

0: कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलु ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले छह दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।

0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडेसा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पर सवार थे, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने

0: सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो बदन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत शकील बदायूनी का था, संगीत निर्देशक थे रवि। और अभी ये सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन, गायक स्वर किशोर कुमार के, फिल्म का नाम अमर प्रेम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में शागिर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: encouraging innovation so that we are able to export. So overall, the entire objective of this mission is not just import substitution and stopping, toys from coming into India, for coming into our markets, but instead creating globally competitive Indian brands that can not just wow local audiences, but also look at audiences around the world.
1: Thank you so much, Vinod Kumar ji, for being with us on this very intensive and in-depth discussion on how the toy industry is going to develop with the government support, especially when it comes to manufacturing, serving both the export market and the domestic market, while at the same time also ensuring that there is a development of a highly skilled workforce and employment is generated, because our entire purpose is to ensure that Viksit Bharat 2047 is achieved with the Atmanirbhar Bharat already policy in place, DPIIT scale and rapid unit of the Union Ministry of Commerce and Industry playing a very important role in this regard. Thank you so much, Vinod Kumar ji, for being with us on this program on Akashvani.
0: Such a pleasure to be here. Thank you for having me.
2: You were listening to a discussion on government's plan to transform India into a global toy manufacturing hub. The participants were Vinod Kumar, President, India SME Forum, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about the program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Money Talk. Manthan.
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एसीमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
5: हिमा बिंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत धन्यवाद
5: जी। हिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जहां पर हम भारत को खेल की दुनिया में अग्रणी बनाने की बात करते हैं। सरकार के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं?
6: जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है, ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है।
5: जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उस पर पड़ रहा है?
6: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, बिहार,

0: पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतर जातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे, उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो उसमें शिक्षा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है। तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
1: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही, इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
0: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस है। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और
1: जी
0: इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको। और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ महानगरों में नहीं, छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। सो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है।
1: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस तरह की जो योजना है तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में, तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
1: जी
0: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
1: हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है, इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा

0: युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
1: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं उनका कितना योगदान है?
0: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेकहोल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेकहोल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स, ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में। और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं। ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
1: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे। तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
0: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें,
1: जी
0: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में,
1: जी
0: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं, और
1: जी
0: एक माहौल भी बन गया है कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना,
1: जी
0: एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है इसी का नतीजा है।
1: हेमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहां पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है।
1: जी
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में है,
1: जी
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में।
1: जी
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है।
1: जी हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने। तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?

0: जो बच्चे आते हैं खेल में उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है, बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है।
1: जी
0: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है।
1: जी
0: हमको पीईटीस है, पीईटीस को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है। वो हमारा दे आर आवर आईज ऑन द ग्राउंड। तो ये
1: जी
0: प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है।
1: जी
0: और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। इनके लिए जो भी सुविधा
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: आकाशवाणी पौड़ी से प्रस्तुत है जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के मुख्य आधार हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। ये तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और जीवन को संतुलित रखते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेलों में से एक खेल है खेल महाकुंभ। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्लेग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के इतर इस वर्ष खेल महाकुंभ कुछ बदलावों के साथ आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ के बारे में हमने बात की खेल महाकुंभ के नोडल अधिकारी श्री भगवान गुसाई से।
2: वित्तीय वर्ष 25-26 में खेल महाकुंभ का जो स्वरूप, उसमें शासन स्तर से बदलाव किए गए। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेल महाकुंभ का स्वरूप था, सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, उसके पश्चात विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता, फिर उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। जिसके स्वरूप में बदलाव करते हुए सर्वप्रथम जो न्याय पंचायत की प्रतियोगिताएं होती थी उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, फिर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और अंत में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के दो कैटेगरी में आयोजित की गई, अंडर 14 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका।

0: जिसमें चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा झपट। इसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको नगद पुरस्कार के रूप में 300, 200 और 150, साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अगले स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 500, 400, 300 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से और साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की टीमों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने कुल 93 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल रहे।
1: खेल महाकुंभ के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के तहत न्याय पंचायत घंडियाल में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के नोडल श्री हनुमंत कुकृति से हमने बात की।
2: इस समय मैं हूं सीकू के ऐतिहासिक मैदान में और यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी न्याय पंचायत घंडियाल श्री हनुमंत कुकृति जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी खेल विधाएं आज यहां पे न्याय पंचायत इस तरह खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित की जा रही हैं।
3: यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, इसमें एथलेटिक्स हो गया, खो खो हो गया, मुर्गा झपट हो गया, जो हमारे पारंपरिक खेल है उसको, विधा को भी काफी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो ये खेल है वाकई में ना कहीं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जिनको न तो कोई सहयोग मिल पाता है, गरीब बच्चे रहते हैं, तो ये खेल महाकुंभ वाकई न कहीं संजीवनी का काम करेगा उन छात्रों के लिए, उन परिवारों के लिए, या उस छात्र को जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। खेल महाकुंभ अपने आप में, जैसे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है कि वाकई में महाकुंभ है, क्योंकि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जितने भी ग्रामीण प्रवेश हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं या विद्यालय में आते हैं, उन सब के लिए वाकई में खुला एक मंच है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं समाज के लिए और उस जो छात्र हैं और जो जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया, उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मंच महाकुंभ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जीवन का एक अमूल्य मूल मंत्र है, तो उसको देखते हुए वाकई ना ये जो हमारे खेल विधाएं होती हैं, ये शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं सबलता और प्रबलता प्रदान करती हैं।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के उपरांत जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसके बाद रांची स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के मध्य किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
4: हमारे युवा कल्याण के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी मेरे शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनपद से आए हुए, विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करें। पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज जमाना बदल गया है और सभी लोगों के पेरेंट्सों की भी सोच बदल गई है। तो आज के जमाने में आप अपने बच्चे से सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और भी प्रताप। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी बच्चों को अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
1: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन समारोह में उपस्थित जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह ने कहा,
5: सांसद चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित की जा रही है, इसमें 11 विधानसभा के प्रतिभागी भाग ले, इसके अलावा कोटद्वार और अन्य जो 5 विधानसभा है जिनमें नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ व रामनगर, इन सभी विधानसभाओं के जो विजयी प्रतिभागी है उनके द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आज

0: दिनांक 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। जो सांसद स्तरीय जो चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है उसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले और अपना सर्वोच्च और अपने इस संसदीय क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करें।
1: विगत वर्ष से विलुप्त होते पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और पिट्ठू को खेल महाकुंभ में शामिल कर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक खेल मुर्गा झपट के संबंध में हमने बात की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारंपरिक खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश कंडारी जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में और यहाँ पे खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल स्पर्धा में कुछ पारंपरिक खेल भी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारंपरिक खेलों के बारे में श्री सतीश कंडारी जी।
3: पारंपरिक खेल के अंतर्गत जो मुर्गा झपट प्रतियोगिता है वह पिछले साल से उन शुरू की गई थी और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पिछले बार प्रतिभाग ना किया हो और अलग अलग जो भार वर्ग रखे हुए तो उनमें इस साल फिर उनके द्वारा मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक खेल के अंतर्गत मुर्गा झपट में हमारे पौड़ी जनपद से जो 5 भार वर्ग हैं, चाहे वो मैं अंडर 14 की बात करूं, चाहे मैं अंडर 19 की बात करूं, दोनों में ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ने ही विशेष उत्साह दिखाया और उनके द्वारा प्रतिभा किया गया। तो और अगर मैं सर थोड़ा सा जो ये पारंपरिक खेल है और उसमें अगर मैं विशेष तौर पे मुर्गा झपट की बात करूं, जो हमारा जो एरिना होता है इसका जो सर्कल बनाया जाता है वह 2 मीटर का रेडियस का एक वृत्त बना हुआ होता है जिसमें कि आपके और उसके साथ साथ एक एक मीटर चारों ओर से एक वर्गाकार टाइप का पूरा एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसमें हमारे 5 वर्ग जो, क्योंकि मैं खेल महाकुंभ की बात कर रहा हूं तो यह 5 भार वर्ग में रखा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, अंडर 14 या अंडर 19 में बात करता हूं। और अगर मैं नियम की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले भी हो चुका है तो इसमें अगर मैं अंडर 14 में बालक की बात करता हूं या किसी भी वर्ग की बात करता हूं तो 2 बालकों के बीच में सेम भार वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोनों में अगर थोड़ा सा मैं नियम देखूं तो नियम में अगर आप बात करूं तो जिस प्रकार से मुर्गा एक नाम दिया गया है पारंपरिक मुर्गा झपट, तो उसी प्रकार एक बालक के द्वारा एक हाथ से पांव को पकड़ा जाता है, आगे पंजे को पकड़ा जाता है और दूसरा हाथ, अब वो स्ट्रॉन्ग हाथ कुछ भी हो सकता है उसका, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे हाथ से वो शोल्डर को पकड़ता है और इस प्रकार से हमारे रेफरी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की जाती है, बाउट शुरू की जाती है और 1 मिनट बाउट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे ही शुरू किया जाता है तो दोनों जो प्रतिभागी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, लड़ते हैं और तो बच्चों के द्वारा शोल्डर से पुश किया जाता है। और अगर उसमें आप देखेंगे सर, अगर बच्चे का चाहे में शोल्डर से हाथ अगर नीचे खिसक जाए या पांव छूट जाए जिस हाथ से उसने पांव पकड़ा है तो 1 पॉइंट दिया जाता है और वहीं पे बाउट रोक दी जाती है। फिर रेफरी दोनों को फिर तुरंत ही, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए तुरंत उनको फिर सेंटर लाइन पे खड़े करके फिर दोनों को फिर बाउट स्टार्ट की जाती है और इस प्रकार से 1 पॉइंट दिया जाता है। और अगर मैं अधिकतम पॉइंटों की बात करता हूं तो अधिकतम 3 पॉइंट दिए जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ही रेफरी के द्वारा शुरू की जाती है और बच्चे जब शोल्डर से पुश करते हैं और पुश करते करते अगर कोई भी प्रतिभागी अगर अपने ओपोनेंट प्लेयर को जो आपका सर्कल बनाया है उस सर्कल से बाहर फेंक देता है, बाहर कर देता है, तो उसको रेफरी के द्वारा 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें एक साइड हमारा ब्लू कॉर्नर होता है जो हम प्लेयरों को जर्सी भी दे सकते हैं, जो विप्स देते हैं हम उनको, तो एक साइड ब्लू कॉर्नर होता है, एक साइड रेड कॉर्नर होता है। तो ये हमारे पॉइंट का वो चलता है। तो 3 हमारे राउंड्स होते हैं 1-1 मिनट के और उनमें फिर स्कोर दिया देखा जाता है कि सम्मानित रेफरी के द्वारा किसका स्कोर ज्यादा हुआ है। फिर वो दोनों को सेंटर में, जैसे ही बाउट खत्म हो जाती है दोनों को सेंटर में खड़ा करके जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉक्सिंग में दोनों के एक एक करके अंक बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मुर्गा झपट में भी रेफरी बीच में रहता है, एक साइड दोनों साइड खिलाड़ी रहते हैं उसके और फिर नंबर बोले जाते हैं, जिसके अधिकतम अंक होते हैं वह विनर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुर्गा झपट खेल चलता है।
2: तो आपने नियम कायदे विस्तृत रूप से हमें समझाए और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया। अच्छा, जैसे कि पारंपरिक खेलों को फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूं कि विलुप्त के कगार पे हमारे

0: सारे पारंपरिक खेल थे, तो खासकर मुर्गा झपट की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभागियों में किस प्रकार उत्साह आप देख रहे हैं?
1: सर, अगर मैं प्रतिभागियों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों का जो आज का जो टाइम है, आज के समय को, परिस्थिति को हम देखते हैं, तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल या अन्य जो हमारे गैजेट्स हैं उनके प्रति, उनके कारण बहुत ज़्यादा रुझाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक खेलों के कारण, क्यों? क्योंकि इन पारंपरिक खेलों को बच्चे नहीं, उनके माँ बाप या मैं एक सोसाइटी के जो हमारे पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा इन खेलों को जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों को इन खेलों के प्रति उनमें उत्साह आए, क्योंकि जो और अन्य हमारे खेल हैं उन खेलों में थोड़ा सा माँ बाप या परिवार या समाज में, मैं बोलूं, सबको नियम कायदे की जानकारी नहीं होती, लेकिन मुर्गा झपट हो गए इस प्रकार के खेल में थोड़ा माँ बाप भी जानते हैं या समाज में कोई अन्य व्यक्ति भी जानता है कि किस प्रकार से इसको रूल या किस प्रकार से खेला जाता है, तो बच्चों को जैसे। और दूसरा, अगर मैं दूसरा जो हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये भी पता है कि मुर्गा झपट में कहीं ना कहीं जो हमारे शारीरिक पुष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो अगर मैं उनके कुछ कंपोनेंट्स, तत्वों की बात करूं, क्योंकि हर खेल में आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जो 100 मीटर दौड़ होती है, तो उसमें स्पीड को देखा जाता है। तो अगर मैं अपने पारंपरिक खेल में मुर्गा झपट में बात करूं, तो आपने देखा होगा जब बच्चों के द्वारा पांव या शोल्डर पे आपका बैलेंस हाथों से पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे संतुलन का जो क्षमता है उनके अंदर, उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब आप वो बाउट कर रहे हैं, तो बाउट करते समय उनकी जो कोऑर्डिनेटिव एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि दो तीन कंपोनेंट्स को एक साथ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे को एकदम से फुर्ती से शरीर को थोड़ा सा, क्योंकि बाउट एक दूसरे से हो रही, तो फुर्ती से शरीर को कभी लेफ्ट या राइट या डोज करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे एकदम से तेजी से स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हुए शोल्डर से पुश भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इन शारीरिक पुष्टियों के जो हमारे तत्व हैं, इनके द्वारा भी बच्चों में उनको भी विकसित किया जा रहा है।
2: जनपद पौड़ी गढ़वाल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अगर मैं महिला क्रिकेट की बात करूं, तो इस साल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं की बढ़ रही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में हमने बात की अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित कुमारी सलोनी से।
3: मेरा नाम सलोनी बिष्ट है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम मरगांव है, जो कि खिरसू ब्लॉक में आता है। मेरे क्रिकेट की स्टार्टिंग गांव से हुई है। गांव में नरेंद्र भैया थे, उन्होंने मेरे को पूरा क्रिकेट खेलना सिखाया है। उस टाइम पे मैं अकेली लड़की थी जो, मतलब, भैया लोगों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे जिससे कि उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आए और क्रिकेट का नॉलेज हो। तो भैया लोगों के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक दिन स्कूल्स गेम में क्रिकेट के ट्रायल्स आए, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। गांव की लड़की के लिए नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जब उनके पास सुविधाएं ना हो, खेलने के लिए ग्राउंड ना हो। मैंने स्कूल्स गेम में क्रिकेट में 2 बार नेशनल खेला है। फिर उसके बाद गांव में भी काफ़ी टूर्नामेंट होने लगे लड़कियों के। अभी पाबो में हुआ था सडनली, तो वहाँ 50,000 का टूर्नामेंट था पहले, जिसमें हम फाइनल में रनर अप रहे। तो जैसे वो टूर्नामेंट लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे कि उन्हें क्रिकेट का नॉलेज हो, और उससे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करने लगी हैं गाँव में, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आगे, कि और ज़्यादा लड़कियां गांव से निकल सकती हैं क्रिकेट में। तो ऐसे टूर्नामेंट हर बार होने चाहिए, जिससे कि लड़कियों को खेल के प्रति थोड़ी रुचि आए और वो खेले, उन्हें पता चले कि कौन से खेल कैसे खेले जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गांव में बहुत सारे जो करा सकते हैं लड़कियों के टूर्नामेंट जो

0: बॉयज के कराते हैं वो गर्ल्स के भी कराए ताकि गर्ल्स भी खेल पाएं।
1: शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राजपाल सिंह रावत जी से।
2: नमस्कार। आज के समय में जहां महिलाएं भी इस खेल के प्रति जागरूक हुई हैं और देखा होगा कि पौड़ी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है और उसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और जुनून है इस खेल के प्रति महिलाओं को आकर्षित करता है। जहां हमने देखा कि पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के 3 या 4 ब्लॉकों में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जैसे कि इस वर्ष जनवरी माह में चौबटाखाल में, उसके बाद एक्वेश्वर विकास खंड के धरासू में, उसके बाद विकास खंड पोखड़ा के गवाड़ी में, और जून के माह में अभी अभी हाल में विकास खंड पोखड़ा के बीनागार द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संसाधनों की कमी के कारण इसे महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी जो जोश और जुनून उनका इस खेल के प्रति है, मैं तो चाहूंगा कि टेनिस बॉल यानी कि डे नाइट गेम से हर जगह महिलाओं के लिए इस खेल को रखा गया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, और बल्लेबाजी भी कहीं महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्रिकेट के प्रति जो लगाव है महिलाओं का, संसाधनों के माध्यम से अगर अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, अच्छी प्रतियोगिता होती है और महिलाओं का और क्रिकेट के प्रति लगाव, ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय में एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकता है। जहां महिलाएं हमारे कृषि क्षेत्र में यानी कि एक गृहिणी के रूप में रह जाती थी, आज वे मैदान पे आती हैं, अपना खेल के प्रति अपना जौहर दिखाती हैं। जहां हाथ में दराती कुदाल को छोड़कर जब महिलाएं मैदान पर आती है और अपने गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाती है, तो देखने को मिलता है कि हमारे इस पहाड़ी अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जीवन में खेलों का महत्व और खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने बात की सहायक क्रीड़ा समन्वयक विकास खंड कोट श्री ज्योत सिंह राणा से।
3: खेलों के संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा खेलों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के साथ गहरा संबंध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे छात्र छात्राएं और हमारे युवा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो तनाव है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं में से एक ग्रंथि है एड्रेनल नाम की, जो कि कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है, उससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो खेलों के माध्यम से क्या होता है, जब हम खेल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा जो कोर्टिसोल नामक ये जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिस्ट्रॉयड होके, या आप यूं कहिए कि उसका स्तर कम होके, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंड्रोफिन हो गया, इन हार्मोन्सों का स्तर हम खेलों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है, जिससे कि समाज में निश्चित रूप से एक जो खेलों का स्तर है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो 6 आयु श्रेणियां जो विभाजित की जाती है उसमें प्रत्येक, जो अगर ग्रामीण खेलों की बात करूं तो नए पंचायत स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 जो ये 6 आयु वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नए पंचायत से 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है, और अगर मैं नगर पंचायत

0: की बात करूं तो नगर पंचायत स्तर पर 3 बालक और 3 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है, और जो हमारे नगर निगम स्तर के जो क्षेत्र हैं तो नगर निगम से 6 बालक और 6 बालिकाओं का प्रत्येक आयु वर्ग में चयन कर विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर जैसे कि आप आज विकास खंड कोर्ट के प्रांगण से देख सकते हैं कि हमारी 7 न्याय पंचायत और हमारे नगर पंचायत पौड़ी, नगर निगम श्रीनगर आदि के बच्चे भी यहाँ पर विकास खंड स्तर हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभा करेंगे उसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग से 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन जनपद स्तर के लिए किया जाएगा, और जब जनपद स्तर पर इन बालक बालिकाओं का जो चयन होगा तो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक आयु वर्ग के 25 बालक और 25 बालिकाओं को जो हमारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1500 रुपये प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी, जो निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए उसे उन लोगों को अवश्यंभावी रूप से प्रोत्साहित करेगी। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर पर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसके अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों की संपूर्ण शारीरिक क्षमता का एक सटीक मापन 6 इवेंटों के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारे 6 इवेंट होते हैं उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, फॉरवर्ड बैंड रीच, 30 मीटर फ्लाइंग रेस, 6x10 मीटर शटल रन और 600 मीटर रनिंग, ये जो प्रत्येक इवेंट होते हैं ये 10-10 नंबर का इनका जो क्राइटेरिया है, और ये टोटल 60 नंबर का फिटनेस बैटरी टेस्ट है, और ये 60 नंबर मार्क्स के आधार पर ही हम प्रतिभावान प्रतिभागियों का चयन कर पाते हैं, और उसके बाद इनको छात्रवृत्ति हेतु इनके चयन करने में हमें आसानी रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो हम खेलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन हमारे ग्रामीण एवं शहरी बालक बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से इनके जो भावी जो परिणाम होंगे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे, एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय होगा और वो एक करियर के रूप में भी इसको अपना सकेंगे, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो समय समय पर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल का फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हाल ही में मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात की स्थानीय फुटबॉल कोच श्री रविंद्र रावत जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया खेल मैदान में, और अभी यहां पर जय कंडोलिया महोत्सव के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी उसका फाइनल हुआ है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने का अलग ही मजा है, और इस टूर्नामेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रवि रावत, जो कि जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत इस फुटबॉल प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में रहे हैं। तो रावत जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने प्रतिभा किया?
3: इसमें 11 तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई इसमें 11 तो जो थी वो इंडिया से टीमें थी और एक टीम नेपाल से थी, तो 12।
2: मैं अभी देख पा रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है। पौड़ी और फुटबॉल का एक अनोखा ही रिश्ता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जी, पौड़ी में तो फुटबॉल का

0: इतिहासी बड़ा अच्छा रहा है, और जहां बात आती है राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता की तो उसमें तो लोग सारे दर्शक पहुंचते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए।
1: यहां पे एक कोच के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और मैं देखता हूं कि जो लड़के हैं उनके साथ साथ अब स्थानीय जो बालिकाएं हैं वो भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बालिकाओं का रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है।
0: जी, लड़कियाँ, पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी हमारे पास, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है वो कोचिंग डिप्लोमा उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके वो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं, और अभी भी बहुत सारी बच्चे जो है छोटे बच्चियां हमारे पास आती हैं, और लड़कियों का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है फुटबॉल में, अगर वो आए और मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
2: जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिलाड़ियों का भविष्य स्वर्णिम है, ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साबित होगा। ये था खेल दर्पण पर आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। संकलन, वाचन, आलेख अशोक सिंह, कार्यक्रम प्रस्तुति अशोक कुमार की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।
5: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट, फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल।

शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जन सम्मोहिनी में। ख्याल गायन कलाकार हैं गणेश प्रसाद मिश्र। तबले पर इनके साथ संगत की है गुलाम साबर ने। सारंगी पर हैं हरिबाबू कौशिक और हारमोनियम पर संगत की है मदन लाल जयपुरी ने। तो आइए सुनते हैं राग जन सम्मोहिनी, कलाकार गणेश प्रसाद मिश्र।

Baba ga ga ga ga da pa ga pa pa da ni da ta ni da pa ga ga ga.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग जनसमोहिनी में ख्याल गायन, कलाकार थे गणेश प्रसाद मिश्र। तबले पर इनके साथ संगत की गुलाम साबिर ने और सारंगी पर थे हरिबाबू कौशिक। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन

तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।